0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैयां।
1: और जो लोग ईमान तो ले आए लेकिन हिजरत नहीं की, तो जब तक वो हिजरत न करें तुमको उनकी रफाकत से कुछ सरोकार नहीं। और अगर वो तुमसे दीन के मामलात में मदद तलब करें तो तुमको मदद करनी लाजिम है, मगर उन लोगों के मुकाबले में कि तुम में और उनमें सुलह का अहद हो, मदद नहीं करनी चाहिए। और खुदा तुम्हारे सब कामों को देख रहा है।

0: FM 100's time check. It's 7 a.m. वतन की सलामती के लिए दिन रात कोशा रहने के अजम का दिन,
1: कोशा रहने के अजम का दिन,
0: यौम आजादी पाकिस्तान, चार दिन बाद दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
2: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
3: FM247365
0: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: at 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: वतन की सलामती के लिए दिन रात कोशा रहने के अजम का दिन,
2: कोशा रहने के अजम का दिन,
1: यौम आजादी पाकिस्तान चार दिन बाद
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
1: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

0: FM 100's time check. It's 8 a.m. वतन की सलामती के लिए दिन रात कोशा रहने के अजम का दिन,
1: कोशा रहने के अजम का दिन,
0: यौमे आजादी पाकिस्तान, चार दिन बाद
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
2: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.

0: Digital Bank, Easy Wala Bank.
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
2: अभी इसी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यूफोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्ने आजादी मुबारक।
6: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
7: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
8: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
9: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
8: मतलब
9: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
8: स्पेशल तो लग रही है।
9: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
8: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
10: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1,000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।
11: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
12: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तान एक अमानत है, उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर, कारोबार, माल सब छोड़ दिया। बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा। जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायद आजम ने हमें 3 उसूल सिखाए, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन। इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाएं। तंजीम के सब्र, हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी। इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठाने, ये अहद भी करें, हम कायदे आजम की इन नसीहतों पर अमल करेंगे। क्योंकि जो 3 उसूल पाकिस्तान बना सकते हैं, वही पाकिस्तान को मजीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मीजान बैंक की जानिब से यौम आजादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
10: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।
13: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में ₹15,000 या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
14: This program is brought to you by
6: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान।
3: And HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: फर्जीवाला बैंक।
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशनवाइड।
3: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1,000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
4: This program is brought to you by
5: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान।
4: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

FM247365. FM247365.

0: जी मेरे प्यारे प्यारे स्कूल गोइंग बच्चों का टाइम है ये, और आई होप कि वो सुन लें हमारा ये तारीफ, क्या थोड़ा लेट हो गया. और तो फिर आप लोग मुझे खैर मैसेज करके मैं बाद में बताएंगे. पहले हम बता दें कि आज का हमारा टॉपिक ये है, आज का हमारा टॉपिक ये है कि कैसे आप अपने आप को खूबसूरत और जवान रखते हैं, क्या है आपका सीक्रेट हमें बताएं. अच्छा तो वो आप बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हो? कह रहे नहीं मैं नहीं बता सकता, ये बहुत कोई हमारी खुफिया बातें हैं कि हम नहीं बताते कि आप अपने आप को जो है ना वो खूबसूरत और जवान कैसे रखते हैं. और एनजीक और इकबाल हुसैन और उस्मान हफीज के अभी से मैसेजेस आना शुरू हो चुके हैं जो हम शामिल करेंगे जरूर. आप लोग भी मुझे मैसेज करें आज समिया के फेसबुक पेज पे या एट आज समिया इंस्टाग्राम पे. और हम क्या करेंगे दोस्तों, हम पहले बच्चों के लिए जो है ना क्या कहते हैं गाना प्ले करेंगे, उसका नाम है जलेबी, हमारा फेवरेट गाना है. और बच्चे बड़े खुश हो रहे होंगे क्योंकि मौसम अच्छा है और अभी नई नई छुट्टियां खत्म हुई हैं और 14 अगस्त की सेलिब्रेशन बच्चे तो जरूर करते हैं. तो खैर बड़े करें ना करें तो बच्चे एक्साइटेड होते हैं, उनको एक्साइटेड होने दें होने दें, अभी खुशियां हैं उनकी, मनाने दें उनको. तो फिर पेरेंट्स उनके देख के खुश हो जाते हैं. तो अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप हसीन और जवान रहते हैं. और जो लोग ज्यादा खुश रहते हैं वो भी हसीन और जवान रहते हैं. और खुश रहने के जरूरी है कि आप पक्के दोस्त के गाने सुने, स्पेशली ये जलेबी वाला गाना. आइए सुनते हैं.
1: अरे जलेबी ये तो मजा हो गया, कोई और दुआ मांग लेता. ओ बेबी जलेबी
2: जलेबी जलेबी किधर गई जलेबी? यही रखी थी मैंने. लाल बेग तुमने यहाँ जलेबी रखी देखी? यही रखी हुई थी लाल बेग, तुमने बिल्कुल नहीं देखी. तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे लाल बेग? तुम कुछ कुछ बोलो ना. तुमने हाथ मुंह पे क्यों रखा हुआ है? क्या मतलब ऐसे ही मुंह पे से हाथ उठाओ, मुंह पे से हाथ उठाओ. तुमने दूसरा हाथ रख लिया है, मुंह पे से हाथ हटाओ, हटाओ मुंह पे से हाथ हटाओ. मुंह खोलो. खत्म हो गई, खा गया.
1: कितने अजीम शख्स हैं, अजीम तरीन अजमत का केतू है आप. आपने अपनी इकलौती जलेबी मुजना चीज को खाने दी, मुजना चीज को. इस मतलबी दुनिया में कौन शेयर करता है? मगर आपने अपनी ब्यूटीफुल जलेबी मेरी नजर कर दी. ये वही बंदा कर सकता है जो आपकी तरह ब्यूटीफुल हो.
2: ब्यूटीफुल
1: हुसन का केटू.
2: मैं हसीन हूँ?
1: मैं तो कहता हूँ आप यहाँ अपना वक्त जाया कर रहे हैं. आपको तो JWFM.com मॉडल होना चाहिए. मैं तो कहता हूँ कि अगर आप इन जुल्फों के साथ किसी शैम्पू के एड में आ जाए तो तबाही मच जाएगी.
2: मेरी जुल्फे शैम्पू का एड?
1: आपकी शक्ल किसी ब्यूटी शॉप के मॉडल से कम नहीं. एक काम करें, आप मुझे अपनी एक तस्वीर दें, मैं स्टीवन स्पीलबर्ग को ईमेल करता हूँ, वो आपको जरूर अपनी अगली मूवी में हीरो लेगा. हीरो?
2: मैं हीरो? नहीं हीरो.
1: नहीं अजीम हीरो हीरो का केटू
2: हीरो अजीम केटू मेरी जुल्फें खुली तो लगायूं मुझे हीरो आए आए आए आए आए आए आए आए जलेबी जलेबी खा गया लाल बैग वापस आओ
0: आप सुन रहे थे पक्के दोस्त का ये स्क्रिप्ट और हम बात कर रहे हैं कि अपने आप को आप जवान और हसीन रखने के लिए क्या मेहनतें और काविशें करते हैं या बोले कि जी नेचुरल जैसे एनजी कह रहे हैं कि मैं तो पठान हूं मैं तो वैसे ही प्यारा हूं तो वैसे पठानों का अल्लाह ताला ने बड़ा हुस्न दिया सच में यकीन करें जब मैं कभी मुझे केपी के जाना होता है और पिशावर की फ्लाइट बंदा ले रहा होता है उसे लगता है कि हम कौन हैं कराची के अंदर ऐसा लगता है कि कहजदा आवाम लगते हैं हम पठान की उन लोगों की खूबसूरती के आगे क्या रंग और रूप और क्या शलवार कमीज सचती है उनके ऊपर वाकई में कराची वालों को देखभाल के सलवार कमीज पहननी चाहिए कि भाई आपके रंग रूप पे ये वाला रंग सजता है कि नहीं उन पर तो हर रंग ही सजता है आय हाय और वो जब काली सलवार कमीज पहनते हैं वाकई में तो बंदा क्या क्या हैंडसम स्मार्ट लगते हैं क्या अल्लाह ने उनको खूबसूरती दी वाकई में तो ये बात तो है। खैर आप लोग टेंशन ना लें आप लोग हमें मैसेज करें आंचे समिया के फेसबुक पेज पे या एट आंचे समिया इंस्टाग्राम पे और एक और तरीका भी है दोस्तों कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें के एच आई स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसे भेज देंगे 3636 पर इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का और ये जानने का कि मतलब क्या सीन है आपका और राइट और हमें इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का मिलते हैं अभी तो खैर हम जो है आपके लिए प्ले कर रहे हैं नाजिया हसन की आवाज में ये ट्रैक जो हम डेडिकेट कर रहे हैं इकबाल हुसैन साहब को और नसीम पटेल जी को भी कर रहे हैं नसीम पटेल जी कैसे हैं आप ठीक है और तो सुनते हैं ये गाना जिसमें वो कहती है मैं जवां मैं हसी मेरे पास क्या नहीं आया सुनता है

0: मैं जवाब, मैं नहीं, और मेरे पास क्या नहीं। तो ये आप सुन रहे थे नाजिया हसन की आवाज में, और आप लोग मुझे मैसेज करें, बताएं कि आप अपने आप को जवान और हसीन रखने के लिए क्या कर रहे हैं। हमें मैसेज करने का तरीका अगर आपको नहीं पता तो बड़ा ही उदास वाला, बड़ी उदासी वाली बात है ये। खैर, हमें आप मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे @RJSameha, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, एंड आई एम गोना सी यू आफ्टर द ब्रेक। दिस कीप लिसनिंग टू FM 100।
1: It's 8:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. वतन की सलामती के लिए दिन रात कोशा रहने के अज़्म का दिन, कोशा रहने के अज़्म का दिन, यौम आजादी पाकिस्तान, चार दिन बाद HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलो डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
3: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तानी अमानत है, उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर, कारोबार, माल सब छोड़ दिया। बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा। जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायदे आजम ने हमें 3 उसूल सिखाए, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन। इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाए। तंजीम, ये सब हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी। इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठाए, ये अहद भी करें हम कायदे आजम की इन नसीहतों पर अमल करेंगे, क्योंकि जो 3 उसूल पाकिस्तान बना सकते हैं वही पाकिस्तान को मजीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मीजान बैंक की जानिब से यौम आजादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: वाला बैंक।
1: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBO।
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
3: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसे इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसे ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसे डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर

0: आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
1: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर जैस कैश से 50% कैश बैक और Hyundai Elantra जीतने का मौका
2: at shopping of 5,000 rupees only.
1: And you're still here? किसका इंतजार है?
2: भागो!
3: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और हजार रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
4: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
5: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
6: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
7: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
8: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
9: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
10: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
9: मतलब
10: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
9: स्पेशल तो लग रही है।
10: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
9: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
3: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और हजार रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
11: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
12: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
13: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
14: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है।

0: आज ही शॉपिंग करें और कैश बैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: This program is brought to you by
2: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान।
3: And HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना। इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदे और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: This program is brought to you by
2: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान।
1: And HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: us on facebook.com/fm.
1: उंगलियों को सेहत और दीन के उसूलों पर अमल करके डिले किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता. वेरी गुड. और के जी रोक नहीं सकते लेकिन डिले थोड़ा कर सकते हैं. याया अमितके ने वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, नो ओवर ईटिंग, वेट अंडर कंट्रोल एंड पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिस्टिक रहे. बिल्कुल सही बात है. वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था गालिबन के अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, कि आप अमीर भी हो जाएंगे, आप सेहतमंद भी हो जाएंगे और आप समझदार भी हो जाएंगे अगर आप जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे. और कराची वालों को इन दोनों चीजों से बहुत ज्यादा चिढ़ है. ना वो जल्दी सोना चाहते हैं और ना ही जल्दी उठना चाहते हैं. पता नहीं वो कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं. और उसके साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि लोग उनको बोलें कि वो जवान और हसीन है. है ना, क्या कहते हैं आप इस बारे में? कुछ ना कुछ तो कहते होंगे कि हम बता नहीं रहे. राइट. और इसके अलावा भी हमारे पास आबिद अमीर और रहीम बलूच का मैसेज आया है और आवाज थोड़ी ज्यादा आ रही है. और राइट, और आबिद अमीर क्या कह रहे हैं? आबिद अमीर कह रहे हैं बहुत बहुत शुक्र समय कि आपने मौजूद रखा, क्योंकि हम 80s और 90s की दिहाई में दुनिया में आने वाले लोग ना पूरी तरह से बूढ़े ना जवान हैं, बल्कि कभी कभी तैयार हो जाए तो बहुत हसीन और थोड़ा थक जाए तो आराम चाहिए होता है. हम लोगों की इतनी वरायटी, इतनी इंजॉयमेंट और हर तरह की बहार देख चुके हैं कि हम अच्छा चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है. और खुद को हसीन और जवान रहने के बड़े टोटके हैं. आजकल लोग बहुत काम कर रहे हैं एंटी एजिंग पे. हर चीज आप उस क्रीम के ऊपर लिख दें एंटी एजिंग, लोशन के ऊपर एंटी एजिंग, एक्सरसाइज एंटी एजिंग, हर चीज पे एंटी एजिंग लिखें तो उसकी सेल्स बढ़ जाती है. कुछ भी हो जाए, कोई भी दौर हो, कोई भी उम्र हो, हर इंसान ज्यादा से ज्यादा हसीन लगना चाहता है. और खवातीन तो खूबसूरत नजर आने के लिए इतनी मेहनतें करती हैं कि बस आप पूछे नहीं. और आजकल चल रहे हैं गोरेपन के इंजेक्शन, आपका रंग कैसा भी काला हो, अजीब से हो आप, लेकिन अगर आपने वो इंजेक्शन लगवा लिया तो फिर आपके हुस्न के अंदर चार चांद लग जाते हैं, 8 चांद भी लग सकते हैं. तो खैर, तो आप लोग मुझे बताएं कि आप अपने आप को हसीन और जवान रखने के लिए क्या कर रहे हैं? जिम छिम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? लेकिन कुछ तो हुस्न होता है कि जो अल्लाह ने दे दिया, लेकिन उस हुस्न को बरकरार रखने के लिए भी इंसान को मेहनत करनी चाहिए. कुछ लोग जो हैं वो पैदा तो नहीं इतने खूबसूरत होते हैं, लेकिन अपने आप में मेहनत कर करके, वर्कआउट कर करके, गोरेपन की क्रीमें लगा के वो खूबसूरत हो जाते हैं. लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने बड़ा हसीन पैदा किया होता है लेकिन वो अपने आप को छोड़ देते हैं, उनके बाल गिर जाते हैं. ऐसे मैंने खूबसूरत चेहरे देखे हैं कि जिसपे मतलब 18-19 साल की उम्र में कहते हैं हाय हाय कितना प्यारा है, और उनको 10 साल बाद देखे हैं सारे बाल ही आधे से आधे बाल गिर गए. तो ये मैं आपको बता रही हूं कि टेंशन इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं. तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप हमें मैसेज करें आरजे समिया के फेसबुक पेज पे, एट आरजे समिया इंस्टाग्राम पे, और हमें इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का. और आपने मुझे बताना है कि आपने आपको खुद को हसीन और जवान रखने के लिए आप क्या करते हैं, आखिर हमें भी बता दें. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान.
2: It's 8:45 AM. This time check is brought to you by

0: डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक।
1: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तान एक अमानत है, उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर कारोबार माल सब छोड़ दिया, बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा।

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फाहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा, तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अज़्म-ए-इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान।
1: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत यूं खोले आपकी मुंतजर है।
4: हमने अपने आप को से तीन बार मौत देखा।
5: टाइम से ऐसे कि मैं उनका बर्थ चला गया, मैं नहीं बचा।
6: फिर उन्होंने वीडियो बनाया, सब मारिया, सब छुटिया।
3: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
7: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
3: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्भाव के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेपटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकदसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चंगुल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: FM 24/7 365।
9: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
10: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाए।
9: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
10: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ। हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हम इससे क्या।
9: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम।
10: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अभी इसी वक्त अप अपना BMI चेक करवाइए,
9: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
10: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
9: आइए वेट से आगे का सोचें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आचे समीहा। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूं उसका ताल्लुक मुल्क की सियासत और कौमी मईशत से बिल्कुल भी नहीं है, उसका ताल्लुक आपसे है कि खुद को हसीन और जवान रखने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। दोस्तों इकबाल हुसैन साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम समीहा जी, मैं खुद को एक्टिव रखता हूं ओवर थिंकिंग से और भी बेजा ख्वाहिशात से खुद को बचाता हूं। मेरा मानना है अल्लाह ने जैसा बनाया वो बेहतर है। अक्सर लोग मशवरा देते हैं बालों को कलर कर लो, मैं उनसे कहता हूं अल्लाह की तरफ से है, इसमें मुदाखलत नहीं करनी। इंसान की जाहिर खूबसूरती से ज्यादा अपने अंदर का इंसान खूबसूरत होना चाहिए। हाँ अच्छी बात है, बिल्कुल आप सही बात है, वैसे भी आप बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपको देखा। लेकिन अंदर की खूबसूरती के लिए भी लोग क्या करते हैं, कोई मेहनत कोई वो भी एक होना चाहिए कि देखो अंदर से खूबसूरत हम तुम्हें ज्यादा बना देंगे। ये आई थिंक रूहानियत से ही होता है, कुछ रूहानियत का जिक्र है इसमें। आमिर जफर सिद्दीकी साहब का भी मैसेज आया, टू कीप अर सेल्फ यंग एंड हेल्दी, कीप अर सेल्फ फार फ्रॉम स्ट्रेस, ऑलवेज कीप हैप्पी डूइंग मॉर्निंग एक्सरसाइजेस, अवॉइड फैटी फूड्स, द सीक्रेट ऑफ बीइंग हेल्दी इज अ लेसन फॉर एवरीवन। बिल्कुल सही बात है आमिर जफर साहब, तो साइकिलिंग पे जाते हैं, साइकिलिंग ग्रुप है, साइकिलिंग वाले जो है क्या कहते हैं मतलब कि बड़े एक्टिव रहते हैं। साइकिलिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। अब आप जानना चाहते होंगे कि मैं अपने आप को खूबसूरत और जवान रखने के लिए क्या करती हूँ दोस्तों, तो ये मेरा सीक्रेट है, मैं बता देती हूँ। इसमें क्या आप टेंशन की बात है, बता देती हूँ, उसे बताना तो नहीं चाहिए अपना सीक्रेट, लेकिन मैं बता देती हूँ कि हमें डांस करना चाहिए। सच्ची बात यह है दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो डांस करते हैं और दूसरे जो बिल्कुल डांस नहीं करते। और आपको क्या लगता है मुझे कौन से लोग ज्यादा पसंद होंगे? तो इसी बात पर हम चलते हैं और डांस करते हैं ब्रायन एडम्स के इस गाने पर जो कह रहे हैं कि मैं मरते दम तक 18 साल का ही रहूंगा, 18 टिल आई डाई। ऑलराइट लेट्स एंजॉय एंड डांस।

0: FM 100's time check. It's 9 a.m.
1: वतन की सलामती के लिए दिन रात कोशा रहने के अजम का दिन,
2: कोशा रहने के अजम का दिन,
1: यौमे आजादी पाकिस्तान चार दिन बाद,
2: चार दिन बाद।
3: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान, मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
5: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तान एक अमानत है, उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर, कारोबार, माल सब छोड़ दिया। बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा। जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायदे आजम ने हमें तीन उसूल सिखाए, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन। इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाए। तंजीम, ये सब हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी। इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठो, ये

0: वाला बैंक।
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए चैट कैश है ना।
2: It's happening आज भी, so keep up. Bata पर Jazz Cash से 50% cashback और Hyundai Elantra जीतने का मौका.
3: At shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? किसका इंतजार है?
3: भागो!
4: Jazz Cash के साथ पाओ फिर से 1 crore जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने Jazz Cash अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 crore का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए Jazz Cash है ना.

कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केटप्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
2: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37।
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: This program is brought to you by
5: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान।
4: And HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।

वेलकम बैक. यू ट्यून इन टू FM 100 और शो है हमारा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे समीहा. आज हम बात कर रहे हैं इस मौजू पे कि आप अपने आप को हसीन और जवान रखने के लिए क्या मेहनतें कर रहे हैं. और लालो रुख का मैसेज आया हुआ है. लालो रुख कह रही है कि वैसे खुद को हसीन और जवान रखने के लिए एक तरीका ये भी है कि खाया पिया हजम किया और रात गई बात गई. सुनो सबकी करो मन की. और बिल्कुल सही बात है. ऐसा ही एटीट्यूड इंसान को जो है ना वो खुश और जवान रखता है. खुश मिजाज लोग ज्यादा ऐसे तक जवान रहते हैं और जो हर वक्त जले और सड़े रहते हैं उनके चेहरे पे उसने ये किया उसने मुझे क्या कहते हैं वो मेरी के वो साड़ी कैरी नहीं करता टाइम स्पेयर ही नहीं करता तो वो इस चक्कर में रह जाते हैं. तो आप ये दूसरों के आप हर वक्त देखें नहीं. अपने आप से प्यार करें अपने आप से मोहब्बत करें और एक्टिव रहें. उसी तरह आप अपने आप को हसीन और जवान रख सकते हैं. कुछ लोग जो है ना वो 16 साल की उम्र में ही बड़े बूढ़े बूढ़े से हो जाते हैं और कुछ लोग होते हैं कि वो 55 साल के भी बड़े जवान दिल होते हैं. आप देख लें कि हमारे जो एक्टर्स हैं बॉलीवुड के जो हमारे फेवरेट एक्टर्स हैं उनमें से यंग लॉर्ड का आपको कोई भी नहीं नजर. अगर आप सोचें कि आपके फेवरेट एक्टर्स कौन से हैं तो आप यकीन करें ज्यादातर जो है वो ओवर 40 होंगे और लिटरली अंडर 40 आपका कोई फेवरेट हो ये मुश्किल काम है. आई एम टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड. खैर हमारे पाकिस्तानी ड्रामों के जो नए हीरोज हैं बहुत ही प्यारे बहुत ही खूबसूरत हैं और माशाल्लाह उन्होंने

भी से अपने आप को बहुत मेंटेन रखा हुआ है कि वो अगर 35 के हैं तो 25 के लगते हैं. तो ये एक कमाल है, आप अगर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आप जो है वो फिट रहेंगे, फिट रहेंगे तो ज्यादा काम भी कर सकेंगे. ज्यादा काम करते रहेंगे तो अपनी फैमिली के लिए ज्यादा फायदेमंद है. अगर आपको लगता है अपनी फैमिली के लिए अपने सेहत को खराब करना, ये गुटखा पान खाना सिगरेट पीना, तो ये आप अपने दुश्मन नहीं है, आप अपनी फैमिली के भी दुश्मन हैं. इसलिए अगर आपको अपनी फैमिली से प्यार है तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें. अपने बच्चों से प्यार है, अपनी बीवी से प्यार है या नहीं भी है तो मतलब क्या कहते हैं, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए. कुछ लोग तो इतना ज्यादा ही ख्याल रखते हैं, जैसे मेरे एक अंकल, वो जिम में, आपको बता दो, वो जिम में ही पाए जाते थे और जिम में ही उनको कोई और लड़की मिल गई तो दूसरी शादी भी हो गई उनकी जिम में. और एक कुछ मेरे दोस्त हैं, उनकी पहली शादी भी नहीं हुई. तो ऐसे हैं लोग. तो आप जिम से जरा दोस्ती करेंगे तो हसीन और जवान नजर आते रहेंगे. और इसी बात पे दोस्तों हमारा ये गाना है, ये जवानी फिर नहीं आ रही, आइए सुनते हैं.

0: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBO।
1: इस मिट्टी के रंग रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
2: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।

0: bank, easy wala bank.
1: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311117837.
2: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: This program is brought to you by
4: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान
3: and HBL Freedom Account जहां खाब वहां HBL

0: FM 100's time check. It's 10 a.m. This program was brought to you by
1: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: वतन की सलामती के लिए दिन रात कोशा रहने के अज़्म का दिन यौमे आजादीए पाकिस्तान चार दिन बाद
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा। किसने कहा?

0: Aurangabad.
1: This song is brought to you by EcoStar.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM247365.
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: बैक टू बैक, बैक टू बैक, ओनली म्यूजिक, नो आरजी टॉक। ओनली म्यूजिक, नो आरजी टॉक। दिस इज एफ

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. वतन की सलामती के लिए दिन रात कोशा रहने के अजम का दिन, कोशा रहने के अजम का दिन, यौम आजादी पाकिस्तान चार दिन बाद HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
1: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबिन सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम. बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें. इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें.
3: It's happening आज भी, so keep up. Bata पर जैस कैश से 50% कैश बैक और Hyundai Elantra जीतने का मौका.
4: At shopping of 5,000 rupees
3: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया. सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए.
6: FM 24/7/365

location for maximum music. FM 100's time check. It's 11 a.m. वतन की सलामती के लिए दिन रात कोशा रहने के अज़्म का दिन, कोशा रहने के अज़्म का दिन, यौमे आज़ादीए पाकिस्तान,

0: इस मिट्टी के रंग रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रैनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रैनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: 100 FM सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
2: खवातीन और बच्चों के हकूक का एहतराम हम सब की जिम्मेदारी। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: लाइक अस ऑन FM 24/7/365
5: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: वतन की सलामती के लिए दिन रात कोशा रहने के अज़्म का दिन यौमे आज़ादीए पाकिस्तान चार दिन बाद
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मुहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: FM 100's time check. It's 12 noon. वतन की सलामती के लिए दिन रात कोशा रहने के अजम का दिन,
1: कोशा रहने के अजम का दिन,
0: यौम आजादी पाकिस्तान चार दिन बाद,
1: चार दिन बाद।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
0: facebook.com/fm247365
3: FM 100
0: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान,
3: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

0: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: सोना सेहत कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

Yes, everybody, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज. और अब जबकि बाकायदगी से आगाज हो चुका है तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम आपको बताएंगे तरीका कार कि कैसे आप भी बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा. तो इसके लिए आपने करना कुछ यूं है कि जाना है अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे. तो इस तरीका कार को फॉलो करें और जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने. अपने हाल अहवाल बताएं और कैसा गुजर रहा है आप सभी लोगों का दिन और कैसा गुजरा आपका गुजरा हुआ दिन, यानी कि संडे का दिन, बिकॉज आज मंडे है एंड एवरी मंडे हम जो है वो सैटरडे संडे या संडे वाले दिन जरूर बात करते हैं. सैटरडे तो हम मौजूद नहीं थे, वरना सैटरडे वाले दिन की बात हम सैटरडे को ही कर लेते हैं, लेकिन भाई मंडे वाले दिन संडे का जिक्र जरूर करते हैं और ये जानते हैं कि आपने कैसा गुजारा अपना छुट्टी का दिन, आराम कर काम कर या फिर वही हुआ कि इतनी मसरूफियत रही कि पता ही नहीं चला कि दिन कैसे गुजरा. और अक्सर औकात संडे वाला दिन जो है वो सो कर भी गुजर जाता है और आपकी नींद बहुत ज्यादा पूरी हो जाती है और आप बड़े इंजॉय करके अपनी जो है वो नींद पूरी करते हैं. और जब आप उठते हैं ना तो उसमें बस ये एक बैड लग हो जाती है कि फिर आपको रात में नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि जब हम ज्यादा सो लेते हैं तो वैसे भी हमारी नींद जो है ना वो काफी ज्यादा पूरी हो जाती है. तो इसके लिए नेक्स्ट डे वापस सोना, बैक टू द रूटीन आने में जरा सी दुश्वारी का सामना तो हमें करना पड़ता है, लेकिन भाई कुछ भी है छुट्टी वाले दिन नींद पूरी कर एक अलग ही लेवल का एंजॉयमेंट हो जाता है. तो कैसा गुजरा आप सबका छुट्टी का दिन, इस हवाले से भी आप लोग जरूर हम लोगों तक आगाही फरहम करें और बताएं कि आप सबका छुट्टी का दिन कैसा गुजरा, क्या रही मसरूफियात. अनटिल एंड अनलेस मैं सोचती हूँ कि क्यों ना हम एक अदर ट्रैक की जाने जब तक चलते हैं, क्योंकि भाई अभी तो हमने अपने लिसनर्स को वक्त दिया है कि आप जरा सोचें और हमें बताएं कि आप सबने अपना छुट्टी का दिन कैसा गुजारा है. कहीं सुबह ही सुबह, अब तो खैर सुबह नहीं, अब तो खैर आफ्टरनून टाइम है, काम में इतने मसरूफ हो गए हैं कि भूल ही गए छुट्टी का दिन कैसा गुजारा है, या फिर याद है और आपको भी बताते हैं. तो ठीक है जी, जब तक आप हमें बता रहे हैं हम कर रहे हैं आपके मैसेज का बेसब्री से इंतजार. चलते हैं ट्रैक की जाने और आते हैं वापस ट्रैक के बाद.

तो ट्रैक के साथ वापस आ चुके हैं और हमने दिया आपको मौका कि आप सोचें और हमें बताएं कि आप सबने अपना छुट्टी का दिन कैसा कैसा गुजारा। तो भाई वो तो आपकी मसरूफियत पर डिपेंड करता है कि किस तरह आपने अपने दिन को गुजारा। और उसी के साथ साथ आज है 10th of August, सो हैप्पी बर्थडे टू यू। आज मेरे किसी भी लिसनर की बर्थडे है, एनिवर्सरी है या फिर कोई और स्पेशल डे है तो आपको मुबारक हो। इसी के साथ साथ

स्त्री है या फिर कोई और स्पेशल डे है तो आपको मुबारक हो। इसी के साथ साथ जश्न आजादी से भी हम सिर्फ 4 दिन दूर हैं और फिर इंशाल्लाह हम अपनी जश्न आजादी का दिन मनाएंगे और स्कूल में अलग तैयारियां हैं बच्चों की और कहीं वालिदैन जो है वो कपड़े ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं बच्चों के। किसी के स्कूल में ये है कि कपड़े पूरे सफेद होने चाहिए, हरा दुपट्टा होना चाहिए, कहीं ये है कि जी मिक्स होना चाहिए। ये बड़ा एक डिफिकल्ट टाइम होता है पेरेंट्स के लिए व्हेन दे आर फाइंडिंग क्लोथ्स फॉर देयर चिल्ड्रंस, जहां पे हर एक स्कूल में अलग अलग तरीके से मंगवाए जा रहे होते हैं। अच्छा, लड़कियों का तो ये होता है उमूमन तौर पर यही स्टाइल फॉलो किया जा रहा होता है जिसमें जो होता है वो व्हाइट सूट होता है और ग्रीन दुपट्टा होता है। दिस इज द कंपल्सरी मोस्ट ऑफ द टाइम्स के इसी तरह के कपड़े चाह रहे होते हैं। अक्सर औकात ये भी हो रहा होता है कि अच्छा सिर्फ आप व्हाइट ड्रेस जो है वो पहन कर आ जाए। अच्छा, लड़कों में ना ये ऑप्शन ज्यादा अवेलेबल नहीं होता जब बड़े हो जाते हैं, सो दे हैव ओनली वन ऑप्शन कि वो व्हाइट कुर्ता शलवार पहन लें और फिर उसी के साथ साथ कभी कोई स्टोल ले लेते हैं या वो जो बैज है वो लगाकर जाते हैं। लेकिन हर जाने वाले अलग मसरूफियात है और इस वक्त जो स्टॉल्स लगे हैं उस पर भी काफी रश नजर आ रहा है क्योंकि भाई वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। नहीं, प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल में तो अभी हम आपके साथ मौजूद हैं। हम तो जश्न आजादी के बारे में आपको कह रहे थे कि वहां पे वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, बिकॉज हम 4 रोज ही दूर हैं जश्न आजादी मनाने से। सो व्हाट्स योर प्लानिंग, इसके बारे में भी आप हमें जरूर बताएं। हमारे पास मैसेजेस का सिलसिला भी शुरू हो गया है जिससे हम करेंगे इकट्ठे शामिल। और अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया और आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, केयर चाहे लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मैसेजेस।

Yes, everybody, तो हम आ चुके हैं वापस और आप लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी है बिकॉज वी आर बैक एंड वी आर टॉकिंग टू यू और हम आपके हाल अहवाल जान रहे हैं कि भाई आप लोग सब कैसे हैं और आप लोगों की जिंदगानी जो है वो कैसी चल रही है ना। होप सो कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, छुट्टी का दिन आप सबने कैसा गुजारा, इस पर भी गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी है कि भाई आप सब लोगों ने अपने छुट्टी के दिन को किस तरह गुजारा, क्या क्या मसरूफियात रही आप सब लोगों की, जिसके जवाब भी हमारे पास मौसूल हो रहे हैं, इसे हम शामिल भी करेंगे कि भाई किसने अपने छुट्टी के दिन को किस किस तरह गुजारा। लेकिन उससे पहले मैं सोचूं कि क्यों ना मौसम पर बात कर लें, क्योंकि कराची का मौसम आज काफी खुशगवार और अच्छा हो रहा है, जिसकी वजह से आज आने जाने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। और दो तीन दिन से हम लोग जो हैं वो काफी ज्यादा गर्मी को एक्सपीरियंस कर रहे थे, हब्स भी था ना, हवाएं चल रही थी और गर्मी भी थी, धूप की शिद्दत भी बरकरार थी, लेकिन थैंकफुली अभी जो है वो गर्मी की शिद्दत थोड़ी कम हो चुकी है एंड दैट्स रियली रियली नाइस। तो इस वक्त कराची का दर्जा हरारत जो है वो है 31, जबकि महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत है 33, जो कि हम कराची वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि हम जो है वो एक अच्छा दर्जा हरारत को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सो दैट्स रियली ग्रेट एंड आई होप सो एंड आई विश कि भाई कराची का जो मौसम है वो इसी तरह रहे, अच्छा सा, मजेदार सा। और वैसे भी भाई अगस्त के महीने में हम जो है वो उस अच्छे से वेदर को तो जरूर एक्सपीरियंस करते ही करते हैं, क्योंकि होता यह है कि 14 अगस्त वाले दिन बारिश ना होना, ये वो हमने हमेशा सुनते आया ना कि दिस इज वेरी इम्पॉसिबल कि 14 अगस्त हो और बारिश ना हो, तो बिल्कुल ऐसे ही है। अभी मुझे उन बच्चों पर बड़ा अफसोस हो रहा होता है जो बेचारे इतनी मेहनत से झंडियां लगाते हैं और ये सब करते हैं और फिर 14 अगस्त में बारिश होने से वो सारी चीजें जो है वो बड़ी मुतासर हो जाती हैं, सो आई एम रियली सैड फॉर दोज किड्स। तो यार कोशिश ये रखनी है आप लोगों ने कि प्लास्टिक वाली झंडियां खरीद लें, उससे ना आप लोगों की झंडियां जो है वो कभी खराब नहीं होंगी और जो आपकी मेहनत है वो भी खराब नहीं होगी, जो कि उमूमन तौर पर लोग गैलरी वगैरह में अपनी झंडियों को लगा रहे होते हैं, घर के बाहर डेकोरेशन कर रहे होते हैं। बट आगे भी शायद हम अच्छे वेदर को एक्सपीरियंस करें एंड दैट्स अ सच अ ग्रेट न्यूज जो मेरे पास मौजूद थी, तो मैंने कहा चलो जी अपने लिसनर से शेयर करते चलते हैं। और उसी के साथ साथ मैं सोच रही हूं कि क्यों ना एक अदर ट्रैक की जाने भी चलते हैं, तो चलें जी ट्रैक को शामिल करते हैं और आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

0: 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: वतन की सलामती के लिए दिन रात कोशा रहने के अजम का दिन,
2: कोशा रहने के अजम का दिन,
1: यौम आजादी पाकिस्तान चार दिन बाद
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
0: This program is brought to you by
4: Step School से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। कॉल नाउ एट 03111117837।
0: Like us on facebook.com/FM247365.
5: FM247365. You're in tune with the lunchtime special on the big one. FM 100.

0: आपकी वो जा रहा है।
1: ओके जी, सो प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हम आपको एक अदर ट्रैक तो डेडिकेट करते ही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी जानते हैं कि आपके लंच में इस वक्त क्या मौजूद है। तो भाई आपके लंच में क्या है? बिरयानी है, निहारी है, पुलाव है, कबाब है, या फिर कुछ और है जो कि आपका बड़ा फेवरेट है, या फिर कुछ आज ऐसा बना है जो कि आपका पसंदीदा नहीं है लेकिन आपने कहा कि चलो जी कोई बात नहीं खा लेते हैं। तो आपके लंच में क्या है हमें जरूर बताएं, और इसे बताने के लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। हमारे पास मैसेज आ चुका है, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम लवली आरजे, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं। कहती हैं आजकल आप बहुत छुट्टियां करने लगी हैं, अल्लाह। नहीं यार ऐसी बात तो नहीं है, सैटरडे को हाँ बस नहीं आए हम। तो कहती हैं सैटरडे को मैं वेट करती रही लेकिन आप नहीं आई, और आज लंच में कोरमा और फ्राई भिंडी है, वेरी नाइस। ये बड़ा डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन आपने बनाया है कि कोरमा भी है और एक जाने फ्राई भिंडी भी है, लवली। ऑल राइट, और भाई भिंडी की तो वैसे ही बड़ी फैन फॉलोइंग है, भिंडी को तो बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। भिंडी आई मस्ट से कि सबकी मोस्ट फेवरेट तरीन सब्जियों में से एक है। और उसी के साथ हमारे पास एक और मैसेज भी आया है जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा लेकिन लंच हमें बता दिया है कि जी लंच में हमारे जो है वो है कीमा। और ये एक दो ऐसे गुमनाम मैसेजेस जरूर आते हैं हमारे पास जिसमें लोग अपना नाम नहीं लिखते लेकिन लंच हमें बता देते हैं। ऑल राइट, तो उन्होंने तो अपना लंच बता दिया है लेकिन अभी मजीद लोगों का लंच जानना भी बाकी है, तो जल्दी जल्दी हमें बताएं कि आपके लंच में क्या है मौजूद। उसी के साथ साथ आज 10th of August है, और 10th of August को कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं इसके हवाले से भी हम आप लोगों तक आगाही फरहम करेंगे कि आज जो है वो एक व्लॉगिंग डे मनाया जाता है, उसी के साथ साथ जो है वो आज एक वर्ल्ड लॉयन डे भी मनाया जाता है, यानी कि शेर का आलमी दिन भी आज के दिन मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है वो आज नेशनल लेजी डे भी मनाया जा रहा है। ओ माई गॉड, मंडे वाला दिन लेजी डे इज वेरी वेरी डिफिकल्ट आई मस्ट से, क्योंकि बाकी दिन आपके जितने भी वो हों आप एक्टिव हो ना हो लेकिन मंडे वाले दिन एक्टिव होना ना बहुत जरूरी है, तो आप ये दिन मंडे को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। हाँ अलबत्त ये है कि आप इस दिन को संडे वाले दिन सेलिब्रेट कर लें, सैटरडे वाले दिन सेलिब्रेट कर लें, या कोई बीच में गेजेटेड हॉलीडे आ जाए उस दिन आप सेलिब्रेट कर लें, लेकिन मंडे वाले दिन आई थिंक लेजी डे इज वेरी डिफिकल्ट। और कुछ लोग बड़े लेजी होते हैं और वो अपने हर काम को ना लेजी तरीके से कर लेते हैं और उन्हें पता होता है कि भाई वो बड़े सुस्त हैं, तो वो उसका कोई ना कोई अल्टरनेट हल निकाल लेते हैं और उस काम को बड़ा जल्दी से कर लेते हैं बिकॉज वो वैसी लेजी हैं, वो इतनी मेहनत मुशक्कत कहां करें। लेकिन भाई मजे की बात यह है कि लेजी डे मनाया जाता है, तो क्या कोई मेरे लिस्टनर्स में भी है इतना ही लेजी जो इस दिन के मनाने पर हो रहा है बड़ा ही खुश? बिकॉज अच्छा लेजी डे, और लेजी डे तो भाई ऐसा होता है कि वैसे कभी ना कभी हम ना ये इस दिन को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपनी जिंदगी में कि थोड़ा सा लेजी डे हो और हम लेजी डे को जो है ना वो भरपूर तरीके से मनाएं और एंजॉय करें कि जी हम सुकून से लेजी लेजी अपने डे को गुजारना चाहते हैं। तो भाई आज लेजी डे भी मनाया जा रहा है, तो मैंने कहा सवाले से भी आप लोगों तक आगाही फराम करें। व्लॉगिंग के बारे में हमने आपको बताया, आज बताया कि वर्ल्ड लाइन डे भी मनाया जा रहा है, एन आज आफ्टरनून टी वीक भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो क्या आप भी दोपहर में चाय पीते हैं या नहीं? तो ये भी आप हमें जरूर बताएं, बहुत सारी बातें एक साथ हमने कर ली हैं, इसलिए अब ब्रेक की जानिब चलते हैं और आते हैं वापस ब्रेक के बाद।

All right, everybody. So I am back again. और गुफ्तगू का सिलसिला आप लोगों के साथ जारी है. और भाई हम अगस्त के जो है महीने में दाखिल हो चुके हैं और आज 10 रोज गुजर चुके हैं और सिर्फ 4 रोज दूर हैं हम आजादी मनाने से. सो भाई बड़ा मजा आ रहा है और ये हर जानब आपको मेरी नगमे सुनने को मिलते हैं जिसे सुन के आपका दिल जो है ना वो और भी बड़ा एक आप बड़े एनर्जेटिक हो जाते हैं. और मुझे लगता है कि इस दौरान ना बड़ा मजा आ रहा होता है तमाम मिली नगमे याद करने में. और इसमें कोई ना कोई ऐसा मेरी नगमा होता है जिससे आपकी कोई याद जुड़ी होती है, कोई आपको इससे याद होता है कि आपने स्कूल में इसमें प्रैक्टिस करी होती है या ये कहीं बहुत ज्यादा सुना होता है. और इतने अच्छे अच्छे खूबसूरत हमारे मिली नगमे मौजूद हैं कि जितना भी सुनो ना आपको कम ही लगता है, बल्कि आपको इतना ज्यादा मजा आ रहा होता है मिली नगमों को सुनने में. और आपका भी कोई फेवरेट अगर मेरी नगमा है तो हमें जरूर बताएं जिससे आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है और जिसके लिए आप सिर्फ 14 अगस्त का इंतजार नहीं करते, अक्सर औकात आप उन मिली नगमों को जरूर सुनते हैं. अच्छा अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे तो मिली नगमे इतने पसंद हैं कि मेरा दिल चाहता है कि बस पूरे अगस्त के महीने में हम लोग जो है वो इन मिली नगमों को सुने. और इतना मजा आता है, कोई ना कोई एक फेवरेट है, कोई

सुने और इतना मजा आता है, कोई ना कोई एक फेवरेट है कोई। अब जो है अब तो काफी, जैसे अगर मैं बात करूं हारूम की, तो हारूम का जो है भाई दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, ये तो मोस्ट फेवरेट ऑफ एवरीवन है। आई मस्ट से कि छोटे बच्चों को भी आता है, बड़ों को भी आता है, हर कोई इस वाले जो है ना वो ट्रैक से वाकिफ है। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहेगा कि उसने ये नहीं सुना। तो एक से बढ़कर एक ये जो मेरे नगमे है ना, ये और हमारी आजादी को मजीद खूबसूरत बना देते हैं। तो भाई कैसी कैसी तैयारियां चल रही हैं आप लोगों को जरा हमें भी बताएं कि क्या क्या तैयारियां चल रही हैं इस दफा। झंडियां लगा ली हैं, नहीं खरीदने जाने का इरादा है, क्या क्या प्लान है आप लोगों का, जरा इस हवाले से आप हम लोगों तक मालूमात फराहम करें। जब तक हम ही नुसरत फतेह अली खान की आवाज शामिल करते हैं और आपको सुनाते हैं, फिर वापस आते हैं।

0: FM 100's time check. It's 2 p.m. वतन की सलामती के लिए दिन रात कोशा रहने के अजम का दिन,
1: कोशा रहने के अजम का दिन,
0: यौम आजादी पाकिस्तान चार दिन बाद
2: ये जैज कैच है ना।
3: सोना सेहत कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
4: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और हजार रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।
5: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: This program is brought to you by
6: Step School से foundation हो strong। Call now at 03111117837।
0: Like us on facebook.com/FM247365। FM247365।
7: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है। वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
8: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
9: हमारी जिम्मेदारी है। खानदानी मंसूबाबंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: FM 100
0: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
10: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. वतन की सलामती के लिए दिन रात कोशा रहने के अजम का दिन यौमे आजादी पाकिस्तान चार दिन बाद
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
0: This program is brought to you by
2: Step School से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। कॉल नाउ एट 03111117837।
3: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा।
4: हमारे माशरे में जिनसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
5: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
7: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें। मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: FM 100's time check. It's 3 p.m. वतन की सलामती के लिए दिन रात कोशा रहने के अजम का दिन,
1: कोशा रहने के अजम का दिन,
0: यौम आजादी पाकिस्तान, चार दिन बाद This program was brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 03111117837.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: वतन की सलामती के लिए दिन रात कोशा रहने के अजम का दिन यौम आजादी पाकिस्तान चार दिन बाद
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
3: कहीं फिर से रहमो चाचा अपना डांगा लेकर न आ जाए, वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ।
4: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें। वज़ारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365

0: Digital Bank, Easy Wala Bank.
1: ईजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और ईजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। ईजी पैसा डिजिटल बैंक, ईजी वाला बैंक।
2: Like us on facebook.com/fm247365 FM 247365

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान

0: FM 100's time check. It's 4 p.m. वतन की सलामती के लिए दिन रात कोशा रहने के अजम का दिन,
1: कोशा रहने के अजम का दिन,
0: यौम आजादी पाकिस्तान, चार दिन बाद,
1: चार दिन बाद।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
3: 100 FM

0: इस मिट्टी के रंग रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365. FM100.
3: 31 साल FM100. आपकी आवाज। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान।
2: अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान।

0: Your location for maximum music.
1: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: वतन की सलामती के लिए दिन रात कोशा रहने के अजम का दिन,
3: कोशा रहने के अजम का दिन,
2: यौमे आजादी पाकिस्तान चार दिन बाद,
3: चार दिन बाद।
4: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
5: मुझे बराबर वाले अंकल के घर कभी नहीं जाना है, जब वो मुझे छूते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है।
6: बच्चों से जिनसी ज्यादती की कई निशानियां हैं, मसलन किसी खास जगह जाने का खौफ, बिलावजह चिड़चिड़ा होना, भूख में कमी या उदासी। इन निशानियों पर ध्यान दें, अपने बच्चों से खुलकर बात करें और इनकी बात पर यकीन करें। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
7: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
8: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

0: dedication for maximum music.
1: This is FM 100.
2: FM 100's time check. It's 5 p.m.
3: वतन की सलामती के लिए दिन रात कोशा रहने के अजम का दिन,
4: कोशा रहने के अजम का दिन,
3: यौमे आजादी पाकिस्तान, चार

0: Global Bank, Easy Wala Bank.
1: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तान एक अमानत है, उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर कारोबार माल सब छोड़ दिया, बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा। जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायदे आजम ने हमें तीन उसूल सिखाए, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन। इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाए। तंजीम के सब हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी। इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठाने, ये अहद भी करें, हम कायदे आजम की इन नसीहतों पर अमल करेंगे, क्योंकि जो तीन उसूल पाकिस्तान बना सकते हैं वही पाकिस्तान को मजीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मीजान बैंक की जानिब से यौम आजादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37।
5: अभी इसी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीक

0: to the bank. Easy wala bank.
1: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनाम जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूम के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा।
2: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
4: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
3: मतलब
4: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
3: स्पेशल तो लग रही है।
4: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
3: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
5: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
3: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
2: मतलब
3: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
2: स्पेशल तो लग रही है।
3: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
2: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
4: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 Pro Max, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
5: खुशखबरी, सिंध की स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अपना कारोबार बढ़ाने का एक बड़ा मौका। यूनिटी पैदार और सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड की SEDF ग्रांट स्कीम के तहत एलिजिबल SMEs को 3.5 करोड़ रुपए तक की ग्रांट सपोर्ट दी जा रही है। अगर आप फिशरीज और एक्वाकल्चर, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, वेस्ट रिसाइकलिंग और डिस्पोजल, वुमेन लेड बिजनेसेस या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के शोबे में काम कर रहे हैं तो ये मौका आपके लिए है। ये स्कीम लाड़काना, ठट्टा, बदीन, थरपाकर और सजावल में काम करने वाले या इन डिस्ट्रिक्ट्स में अपना कारोबार शुरू करने वाले ख्वाहिशमंद SMEs के लिए है। एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2026 है। देर ना करें, अपना इनोवेटिव और वायबल बिजनेस आइडिया आज ही तैयार करें और SEDF ग्रांट पोर्टल पर अपना बिजनेस प्लान सबमिट करें।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान।
7: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: एंड कैडिलैक
9: लगा और भूल जा।
10: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे। होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल ना करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशत गर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशत गर्दों की माली मुआवनत भी दहशत गर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
11: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
12: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
13: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
14: This is your music.

0: your location for maximum music.
1: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: वतन की सलामती के लिए दिन रात कोशा रहने के अजम का दिन यौम आजादी पाकिस्तान चार दिन बाद
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
4: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
5: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
7: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
8: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
7: मतलब?
8: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
7: स्पेशल तो लग रही है।
8: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
7: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।

0: Viva La Bank.
1: 100 FM.
0: This song is brought to you by EcoStar.
2: Suno.

0: us on facebook.com/FM247 365.
1: FM 247 365.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीमगंज,
2: अक्रॉस
3: द नेशन,
2: दिस इज FM 100.
4: वतन की सलामती के लिए दिन रात कोशा रहने के अजम का दिन,
5: कोशा रहने के अजम का दिन,
4: यौमे आजादी पाकिस्तान,

0: पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
4: किसने कहा था पैसे

हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।

0: Lala Bank. Easy Lala Bank.
1: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
4: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया. सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए.
5: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata per Jazz Cash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka
6: at shopping of 5,000 rupees only.
5: And you're still here? Kiska intezaar hai?
6: Bhago!
7: Sir, sir, Nitro Force ki bori pe laga 9 hinson ka sticker code apne naam aur ilake ke saath 0300-300-641 par bheje ya Sir, sir, Pakistan app ke zariye apni entry register karwaye aur mauka paaye umra ticket, motorcycle aur mobile phone jaise dheron inaamat jeetne ka. Entry bhejne ke baad bori aur sticker sambhal ke rakhe. Mazeed malumat ke liye Sir, sir, helpline par call kare to Sir, sir, Nitro Force ko laga aur jeet taja.
8: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
9: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
10: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं.
9: मतलब?
10: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims or sunroof.
9: Special to lag rahi hai.
10: Aur price sirf 64,49,000.
9: Aap samajh aaya, ise special edition kyun kehte hain? Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
11: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर. अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा क्यूआर से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है. आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
1: This program is brought to you by
12: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान.
1: And HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL. And

0: come on.
1: FM 100's time check. It's 6 p.m. वतन की सलामती के लिए दिन रात कोशा रहने के अज़्म का दिन, कोशा रहने के अज़्म का दिन, यौमे आज़ादी पाकिस्तान

0: अभी बाकी है, हौसला जवान, अज़्म मजबूत और सफर रवां है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की दूर अंदेश क़यादत, तरक्की पसंद सोच, अवामी खिदमत के विजन की रहनुमाई में मसरूफ है। हुकूमत सिंध ने जदीद और मुफ्त तिब्बी सहूलियात का मजबूत निज़ाम कायम किया। SIUT, SICVD, JPMC, NICVD के सैटेलाइट सेंटर्स, गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जदीद सहूलियात दस्तियाब है, जबकि सिंध इंस्टीट्यूट चाइल्ड हेल्थ न्यूरोलॉजी में लाखों बच्चों को इलाज फराहम किया जा रहा है। SPHF दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है, जिसके तहत 21 लाख घर तामीर किए जा रहे हैं। तालीम के फरोग के लिए हुकूमत सिंध ने डाउ यूनिवर्सिटी, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना, पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वेमेन, शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी, बेगम नुसरत भुट्टो वेमेन यूनिवर्सिटी सखर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद और अरोर यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन हेरिटेज, शहीद बेनजीर भुट्टो गर्ल्स कैडेट कॉलेज लाड़काना और बख्तावर कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स। खुसूसी अफराद को बाख्तियार बनाने के लिए स्पेशल एजुकेशन, बहाली, हुनरमंदी और खुद मुख्तार जिंदगी के मौके को मजीद वसअत दी गयी। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की रफ्तार को तेज करने के लिए सिंध हुकूमत ने जदीद शाहराहों, पुलों और राबिता सड़कों का वसी जाल बिछाया। शाहराहे भुट्टो कराची के सनती इलाकों, बंदरगाहों और मोटरवे M9 को आपस में जोड़ रही है, जबकि 141 से ज्यादा सड़कों और 825 किलोमीटर रोड नेटवर्क्स की बहाली मुकम्मल की गई, जिससे लाखों अफराद की आमद और रफ्त, तिजारत और रोजगार को नई रफ्तार मिली। ज़रई खुशहाली के फरोग के लिए सिंध हुकूमत ने किसान दोस्त मंसूबों का एक जामे सिलसिला शुरू किया। बेनजीर हारी कार्ड के पहले मरहले में तकरीबन 2,98,000 रजिस्टर्ड किसानों को बीज, खाद, सरई अद्वियात, जदीद मशीनरी पर सब्सिडी, रियायती कर्जे, फसल बीमा और कुदरती आफात की सूरत में माली मुआवनत फराहम की जा रही है। पानी के हर खतरे को कीमती सरमाया बनाते हुए लाखों एकड़ जरई अराजी को दोबारा पैदावारी अमल से जोड़ा जा रहा है। धाबजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सी पैक के तहत जदीद सनती मरकज के तौर पर तरक्की दी जा रही है। खैरपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन साइट कराची, नूरियाबाद, बिन कासिम और दीगर सनती जोन्स में बुनियादी सहूलियात बेहतर बनाकर मुल्की और गैर मुल्की सरमाया कारी को फरोग दिया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने अवामी ट्रांसपोर्ट में जदीद दौर का आगाज किया। रेड बस, पाकिस्तान की पहली ईवी बस, पिंक बस और खवातीन को मुफ्त स्कूटीज फराहम की जा रही है, जो खवातीन को महफूज और बावकार सफर फराहम कर रही है। तवानाई के शोबे में थरकोल मंसूबा सिंध की तरक्की का अहम संगे मील बन चुका है, जहां मकामी कोयले से हजारों मेगावाट बिजली पैदा करके कौमी ग्रिड को मजबूत बनाया जा रहा है। नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट, घारो विंड कॉरिडोर और शमसी तवानाई के मंसूबे तवानाई के मुतबादिल ज़राए को फरोग दे रहे हैं। ये सिर्फ मंसूबों, आदाद और शुमार या तामीरात की दास्तान नहीं, खुशहाली को सिंध के हर शहर, हर गांव और हर खानदान तक पहुंचाने के अज़्म की रोशन अलामत है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई है, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
3: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: अभी इसी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वी

0: to the bank, easy wala bank.
1: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तानी अमानत है, उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर, कारोबार, माल सब छोड़ दिया। बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा। जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायदे आजम ने हमें तीन उसूल सिखाए, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन। इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाए। तंजीम, ये सब हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी। इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठाने, ये अहद भी करें, हम कायदे आजम की इन नसीहतों पर अमल करेंगे। क्योंकि जो तीन असूल पाकिस्तान बना सकते हैं, वही पाकिस्तान को मजीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मीजान बैंक की जानिब से यौम आजादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
4: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
3: मतलब
4: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims or sunroof.
3: Special to lag rahi hai.
4: Aur price sirf 64,49,000.
3: Aap samajh aaya, ise special edition kyun kehte hain? Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
5: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदे और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
4: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
3: मतलब
4: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims or sunroof.
3: Special to lag rahi hai.
4: Aur price sirf 64,49,000.
3: Aap samajh aaya, ise special edition kyun kehte hain? Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.

0: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178377।

0: little bang, easy wala bang. सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
1: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।
2: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: इस मिट्टी के रंग रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: This program is brought to you by
2: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान।
1: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: Digital Bank, Easy Wala Bank.
1: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए। जैस कैश है ना।
2: 100 FM.
3: दिस सॉन्ग इज ब्रॉट टू यू बाय इको स्टार.
4: Shut up!

0: जिंदाबाद।
1: दिस सॉन्ग इज ब्रॉट टू यू बाय इको स्टार।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान।
4: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

8:30 PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. वतन की सलामती के लिए दिन रात कोशा रहने के अजम का दिन, कोशा रहने के अजम का दिन, यौमे आजादी पाकिस्तान, चार

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
1: हर शहर की अपनी पहचान, हर कोने में बसा है पाकिस्तान। इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान। कैमरा उठाइए और अपने पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाइए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैशटैग दिल से सरसब्ज के साथ सरसब्ज पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात। तो आओ दिल से देखें सरसब्ज पाकिस्तान।

0: A digital bank. Easy wala bank.
1: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए। अभी

0: वाला बैंक शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
1: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर एडमिशंस ओपन फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37
2: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है
3: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं
2: मतलब
3: इमेजिन पुश स्टार्ट मल्टीपल ड्राइव मोड्स क्रूज कंट्रोल पावर ड्राइवर सीट Alloy rims और sunroof.
2: Special तो लग रही है
3: और price सिर्फ 64,49,000.
2: अब समझ आया इसे special edition क्यों कहते हैं Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
4: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं बस अपने इजी पैसा अकाउंट में ₹15,000 या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या ₹50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं तो इंतजार किस बात का अभी डिपॉजिट करें और जीते इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक

0: से खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
2: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
3: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।
5: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर जैज कैश से 50% कैशबैक और Hyundai Elantra जीतने का मौका
6: at shopping of 5,000 rupees
5: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
7: This program is brought to you by
8: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान।
7: And HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.

0: like us on facebook.com/FM247365.
1: FM247365. This is your music.

0: Bundle Bank, easy wala bank. Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और हजार रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
1: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तानी अमानत है. उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर, कारोबार, माल सब छोड़ दिया. बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा. जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायद आजम ने हमें तीन उसूल सिखाए. ईमान, इत्तेहाद, तंजीम. ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन. इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाएं. तंजीम, ये सब हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी. इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठाने, ये अहद भी करें. हम कायदे आजम की इन नसीहतों पर अमल करेंगे क्योंकि जो तीन उसूल पाकिस्तान बना सकते हैं वही पाकिस्तान को मजीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे. मीजान बैंक की जानिब से यौम आजादी मुबारक. पाकिस्तान जिंदाबाद.
2: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
3: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
4: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं.
3: मतलब
4: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims और sunroof.
3: Special तो लग रही है.
4: और price सिर्फ 64,49,000.
3: अब समझ आया इसे special edition क्यों कहते हैं. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
5: This program is brought to you by
6: इस जश्न आजादी फातिमा फर्टिलाइजर के साथ मिलकर बुलंद करें अपने शहर की शान.
7: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL. एंड
8: कैडिलैक नॉनस्टॉप फन करते जाओ.
7: एंड
9: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
7: 100 FM.
10: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फिकार. And today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
11: Ye paigham हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
12: FM 100. लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
2: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1,000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
4: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
1: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
2: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: अभी इसी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉल

0: जिंदाबाद।
1: दिस सॉन्ग इज ब्रॉट टू यू बाय इकोस्टार।
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: your location for maximum music.
1: It's 7:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
2: वतन की सलामती के लिए दिन रात कोशा रहने के अजम का दिन,
3: कोशा रहने के अजम का दिन,
2: यौमे आजादी पाकिस्तान 4

0: The Bank, Easy Wala Bank.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: जैज कैश के साथ पाओ फिर से एक करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
4: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया. सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए.

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
2: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तानी अमानत है, उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर कारोबार माल सब छोड़ दिया। बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा। जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायद आजम ने हमें 3 उसूल सिखाए, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन। इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाएं। तंजीम, ये सब हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी। इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठाने, ये अहद भी करें, हम कायदे आजम की इन नसीहतों पर अमल करेंगे। क्योंकि जो 3 असूल पाकिस्तान बना सकते हैं, वही पाकिस्तान को मजीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मीजान बैंक की जानिब से यौम आजादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
4: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर जैस कैश से 50% कैश बैक और Hyundai Elantra जीतने का मौका
5: at shopping of 5,000 rupees
4: only. And you're still here? किसका इंतजार है?
5: भागो!
6: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
7: किसने कहा था पैसे

0: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
0: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: नशा न परेशानियाँ खत्म करता है, इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: तोहीन रिसालत, नफरत आमेज तकरीर और मजहबी फिरका वारियत का फरोग आईने पाकिस्तान के मुताबिक एक इंतहाई संगीन जुर्म है। सोशल मीडिया जैसा कि यूट्यूब, ट्विटर या केबल FM पर इस नौयत का गैर कानूनी मवाद नजर में आए तो FIA, साइबर क्राइम विंग, PTA या पेमरा को फौरी इतला करें। जिम्मेदार शहरी बने, मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। मुफाद आमा का ये पैगाम आपको पेमरा की जानिब से पेश किया जा रहा है।
5: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
2: पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, पाकिस्तानी अमानत है, उन लोगों की अमानत जिन्होंने अपना घर कारोबार माल सब छोड़ दिया। बेशुमार कुर्बानियां थी लेकिन अपना मकसद नहीं छोड़ा। जब पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब था, कायदे आजम ने हमें 3 उसूल सिखाए, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। ईमान, अल्लाह पे यकीन, अपने मकसद पर यकीन। इत्तेहाद के मुख्तलिफ जुबानों और इलाकों के बावजूद हम एक कौम बनकर खड़े हो जाए। तंजीम के सब्र, हिम्मत, मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन के साथ ये तहरीक मंजिल तक पहुंच जाएगी। इस 14 अगस्त सिर्फ परचम न उठाए, ये अहद भी करें, हम कायदे आजम की इन नसीहतों पर अमल करेंगे। क्योंकि जो 3 असूल पाकिस्तान बना सकते हैं, वही पाकिस्तान को मजीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मीजान बैंक की जानिब से यौमे आजादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
3: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
4: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाएं।
3: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
5: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
6: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
3: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम नहीं।
5: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
6: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
5: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
3: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
6: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
3: आइए वेट से आगे का सोचें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम जराए इब्लाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाजमीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसम वेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई। महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। PTA.txt महफूज है, लेकिन PTA.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को تھی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں۔ کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں۔ کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں۔ اپنا ای میل پاس ورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں۔ پاس ورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں۔ ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں۔ اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں۔ فیشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں۔ نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں۔ بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں۔ اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں۔ ان پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں۔ آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے۔ ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں۔ یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
8: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
9: FM 247 365 FM 247 365

0: FM 100's time check. It's 8 p.m. वतन की सलामती के लिए दिन रात कोशा रहने के अजम का दिन,
1: कोशा रहने के अजम का दिन,
0: यौमे आजादी पाकिस्तान चार दिन बाद,
1: चार दिन बाद।
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
0: 100 FM
2: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
0: 100 FM
3: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
0: 100 FM
4: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1,000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।
0: 24/7/365
5: FM 24/7/365
0: FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान,
5: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 247 365

0: It's 8:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. वतन की सलामती के लिए दिन रात कोशा रहने के अजम का दिन, कोशा रहने के अजम का दिन, यौम आजादी पाकिस्तान चार दिन बाद
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
0: 100 FM
1: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
0: 100 FM
2: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली गैस पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
0: 100 FM
3: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1,000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट के लिए जैज कैश है ना।
0: FM 24/7 365 This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے، ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے۔ ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے،

0: जिंदाबाद।
1: दिस सॉन्ग इज ब्रॉट टू यू बाय इको स्टार।
2: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कानून की पाबंदी कीजिए।
3: बैन अल-अक्वामी सतह पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: FM247365

0: Abad.
1: This song is brought to you by EcoStar.
2: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी. एक समझदार माँ बनेगी. सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी. आने वाली नस्लें संवारेगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी. पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है. लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात हैं और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान. फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं. जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
1: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: बैंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: 100 FM. This song is brought to you by EcoStar.
2: सुनो

0: Abad.
1: This song is brought to you by EcoStar.
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें। मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है, लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जय सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी

0: FM 100's time check. It's 10 p.m.
1: वतन की सलामती के लिए दिन रात कोशा रहने के अजम का दिन,
2: कोशा रहने के अजम का दिन,
1: यौमे आजादी पाकिस्तान चार दिन बाद,
2: चार दिन बाद।
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
4: 100 FM
5: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
4: 100 FM
6: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली गैस पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
4: 100 FM
7: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1,000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट के लिए। जैज कैश है ना।
8: 24/7/365
9: FM 100
10: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान,
9: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।

0: This song is brought to you by EcoStar.
1: क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डालें, उनसे उनका बचपन ना छीन। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 like us on facebook.com/FM247365

0: This song is brought to you by EcoStar.
1: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कोर इसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 60% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेहतरीन इस्तेमाल। मुनशियात फरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां बात है। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ है, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स के एन एफ वाजे मकसद और मजबूत इरादे के साथ मैदान

वेलकम बैक कहेंगे सोने दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद। अच्छा कुछ मैं सवालात आप लोगों से वैसे ही पूछ चुका हूं अगस्त के महीने के अलावा भी जनरल नॉलेज के हवाले से, जैसे हमारे पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है, ये सवाल मैं आपसे कर चुका हूं, इसका जवाब भी मैं अभी आपको फौरन बता रहा हूं। पाकिस्तान का कौमी फूल जो है वो चंबेली है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है और वो है मारखोर। ये तो मैंने आपको खुद ही बता दिया, अब आपसे सवाल भी कुछ इसी तरह के करेंगे, दो सवाल करेंगे। वैसे सवाल मेरे जहन में एक थोड़ा सा मुश्किल आ रहा था, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि वो मैं आपसे बाद में करूंगा। लेकिन माशाल्लाह से पाकिस्तान के हवाले से आप लोगों की जनरल नॉलेज काफी बेहतर है, तो इसी तरह मैं आपसे अब पूछना चाह रहा हूं कि आपने ये बताना है पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है। पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है और कौमी फल भी बता दीजिए। पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है और पाकिस्तान का कौमी फल कौन सा है, ये सवाल मैंने आपको किया है जनाब, और इसका देना है आपने जवाब 3636 पर। मैसेजेस आपके आना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले फीता काटा है हमारी प्यारी सी बहना सबा गुल ने, कह रही है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, और लाला को, संजीदा अभी को, मुश को, मानूर को और तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है, तो वालेकुम अस्सलाम। और उसके साथ ही साथ संजू आ गई हैं जनाब, आज बहुत जल्द संजू, क्या बात है क्या बात है भाई। सबसे पहले तो हम इनके मैसेजेस पढ़ने से पहले संजू से पूछना चाहेंगे कि आपकी तबीयत कैसी है, आपके सर का दर्द कैसा है, उम्मीद करता हूं कि बेहतर हो गया होगा, हमने बेतहाशा दुआएं की हैं। कह रही है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सलामती और आफियत की अनगिनत दुआएं, रब्बे ताला की रहमतें बरकतें अपने आपके घराने पर नाजिल हों, आमीन अलाही आमीन। नरीन दिल की खुशगवार धड़कनों की मध्यम मध्यम सी धक धक से खुशामदीद कहती हूं, कहिए कैसे मिजाज हैं, हाय अल्लाह जी, इतना अच्छा मैसेज पढ़कर खुद ब खुद चेहरे पर मुस्कुराहट और मिजाज बखैर हो चुके हैं। पूरी कोशिश है इख्तिताम तक साथ बंधा रहे, बशर्ते सांसों की रवानी मुतासिर ना हो, आमीन सुम आमीन, अल्लाह ताला इसी तरह चलती रहे ता कयामत। अब उनके दिल पे लग जाती हैं हमारी बातें, जो कहते थे तुम कुछ भी कहो अच्छा लगता है, हाय हाय हाय। इब्तदाइया पैगाम में कोई लफ्ज तीर की तरह तो नहीं लगा, सलामत रहे, कैसी बातें कर रही हैं, इतना खुशगवार बेहतरीन मैसेज, वाह वाह वाह भाई क्या बात है क्या बात है। यानी कि समझ रही है ना, मिर्जा शुजात साहब आ गए हमारे शहजादे गुज्जर खान, तो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, तमाम सुनने वालों को मेरा आदाब तस्लीमात, तमाम लिसनर और पूरे पाकिस्तान को मेरी जानिब से एडवांस में जश्न आजादी मुबारक, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, जियो लाला, पहला नगमा ही कमाल का, दिल में सुरूर और जज्बा पैदा हो जाता है पाक वतन के नगमे सुनकर, पूरी दुनिया में आज तक कोई भी पाकिस्तानी नगमों के मुकाबले में नगमा नहीं बना सका, ये बात फैक्ट है और मैं ये कर चुका हूं अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में, दुरुस्त कहा आपने। और नौरीन तौसीफ मेरी प्यारी सी बहना, कैसन है बहना अब, अच्छा मैसेज नहीं आया इनका, ये पुराना मैसेज है, मुश्क आ गई हैं, कहती हैं क्या कहती हैं मुश्क जी, आए मुश्क तुम्हारा मैसेज कहां से शुरू हुआ है, अरे इतने सारे, कह रही अस्सलाम वालेकुम हैंडसम, क्या हाल है, कल का शो तो सुपर डुपर था, थ्रूअपर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, डुपर थ्रूपर, अच्छा सुपर डुपर थ्रूपर था, माशाल्लाह से बहुत इंजॉय किया, चाचू नाश्ता, शोहर मैं नहीं भेजा था उड़न तश्तरी पर, चाचू नाश्ता, शोहर मैंने ही शॉप नाश्ते का शॉपर मैंने ही भेजा था, उड़न तश्तरी पर भेजा था, कैसा चाचू अब हमारा, आपने हमारा बेइज्जती खराब कर दिया, जा जा तुझे माफ किया, क्या याद करेगा चाचू, अभी आ तो जाए,
अच्छा, इनके और भी मैसेजेस हैं, वो गाहे बगाहे इंशाल्लाह शो में शामिल होते रहेंगे। नौमान आ गए हैं जनाब बल्दिया से और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है, ओके टेक। और कह रहे हैं कि संडे को वालदा को लेकर गया था क्यूमोथेरेपी के लिए और फोर्थ सेशन था, इंशाल्लाह ताला वो बिल्कुल सही हो जाएंगी, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। वाला की के बाल तेजी से गिर रहे हैं, वाला के बाल हाय बहुत लंबे बाल थे और अल्लाह ताला उनको सेहत दे दे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से फिर वैसे ही बाल आ जाएंगे, फिक्र नहीं करना। और उनको भी कहना हिम्मत और हौसला देना वालदा को, सही है। अच्छा सुने हो, अब जो है मैं एक ट्रैक की जानिब जा रहा हूं और आज मेरी कोशिश यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्स आप लोगों को सुनाऊं। और अभी जो मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूं, बलूचिस्तान से स्टार्ट करेंगे, सिंध जाएंगे, सिंध से पंजाब, पंजाब से केपीके और फिर हमारे गिलगित बल्तिस्तान की जानिब भी जाएंगे। तो बलूचिस्तान के हवाले से कुछ बता दूं और उसके बाद फिर आपको एक बड़ा जबरदस्त ट्रैक भी सुनाएंगे कि हमारे पाकिस्तान का जो सबसे रकबे के हिसाब से जो सबसे बड़ा सूबा है वो बलूचिस्तान का है और इसका रकबा तकरीबन 347,190 मुरब्बा किलोमीटर है। अब अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो यही बता देता हूं आपको कि ये पाकिस्तान का जो कुल रकबा है ना उसका 44% है, यानी कि 44% पर हमारा सूबा है बलूचिस्तान है और बाकी जो 56% जो है वो हमारा पूरा पाकिस्तान है उसमें। और बलूचिस्तान बड़ा खूबसूरत हमारा सूबा, खूबसूरत पहाड़, जंगल, जंगली हयात और कुदरती मनाजिर जो हैं वो ऐसे हैं कि बस आपको क्या बताएं आपको। और बंगोल नेशनल पार्क जो है ये बहुत ही पॉपुलर है और कभी मौका मिले तो आप जरूर जाइए। कुंड मलीर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये भी बलूचिस्तान में ही है। और मकरान की जानिब जाएं आप, मकरान कोस्टल हाईवे, तो उसके साथ ही खूबसूरत सा साहिल है कुंड मलीर का। और गवादर का भी आपने सुना होगा, गवादर जो है खूबसूरत समंदर, साहिल और गवादर पोर्ट जो है वो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। उसकी वजह जो है वो मैं आपको बता दूं कि गवादर पोर्ट ऐसा है कि पोर्ट के साथ किनारे पर जो है वो बड़े बड़े जहाज जो हैं वो लंगर अंदाज हो सकते हैं, उसकी गहराई इतनी है। वरना अक्सर जो बड़े जहाज होते हैं, बहरी जहाज की बात कर रहा हूं, ये पोर्ट से थोड़ा दूर होते हैं तो और दूसरे छोटे जहाज जाते हैं वहां पर और उसमें से जो सामान लाद कर फिर वो पोर्ट पर आता है। लेकिन हमारा गवादर पोर्ट जो है वो दुनिया के उन बेहतरीन पोर्ट्स में से है कि जहां पर बिल्कुल किनारे के साथ ही, पोर्ट के साथ ही जो गहराई है वो इतनी ज्यादा है कि वहां पर बड़े जहाज भी जो है वो लंगर अंदाज हो सकते हैं। गवादर की ये खूबी है। और उसके साथ ही साथ फिर जियारत के बारे में तो आपको पता ही होगा, हैं जी, बिल्कुल पता होना चाहिए। कायद आजम रेजिडेंसी की वजह से वो बहुत मशहूर है, ये भी जो है ये भी बलूचिस्तान में है। और उसके साथ साथ क्वेटा का भी आपको पता है कि क्वेटा भी बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है और फलों की वजह से, बागात की वजह से बहुत मशहूर है और खुसूसी तौर पर जो है मेवाजात यानी कि ड्राई फ्रूट जो है वो वहां के बहुत मशहूर हैं। और एक और जगह है मौला चौकट, ये भी बलूचिस्तान में वाकया है और वहां पर वाह वाह क्या कुदरती नजारे हैं यार, आबशारें, पहाड़ और कुदरत के हसीन तरीन मनाजिर वहां पर मौजूद हैं। मगर इसके साथ एक और भी मैं बता दूंगा, उसके बाद फिर मैं इनकी तारीफें करूंगा। एक और है प्रिंसेस ऑफ बॉब, ये मैंने आपको हंगोल नेशनल पार्क के बारे में जो बताया है कि उसके इलाके के पास ही है और चट्टानों ने एक इतनी खूबसूरत शक्ल इख्तियार की हुई है कि देखने के काबिल है। तो बलूचिस्तान हमारा बहुत हसीन है, मादनियात से अल्लाह ताला ने उसको भरा हुआ है। मगर हम मुझे नहीं पता
क्यों हम इसका फायदा नहीं उठा पा रहे। और बलूचिस्तान के जो खाने हैं वो पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। बलोची सज्जी तो आपको पता ही है कि क्या बात है भाई, सज्जी जो है वो यहां पर भी खाई जाती है। और एक और इनकी एक डिश है, उसका डिश तो नहीं कहूंगा, रोटी जो है वो बड़ी रिवायती बलोची एक रोटी है, उसको काक शायद कहते हैं। और दमबख्त तो आपने खाया ही होगा, गोश्त और चावल के साथ जो है वो रिवायती जो डिश है। मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया। और खुश्क गोश्त वहां का बड़ा मशहूर है। और मेवाजात के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो चले आपको लेकर चलते हैं बलूचिस्तान के इलाके की, ये जितनी भी मैंने बातें की हैं उनकी सैर कराते हैं इस गाने के जरिए।

0: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: Like us on facebook.com/fm247365
3: fm247365
4: वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको, बलूचिस्तान की सैर कराई आपको, और उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा आपको, और हो सकता है कि बहुत सारी बातें ऐसी हों जो कि आपको नहीं मालूम हो और मेरे तवस्सुत से आपको पता चल गई हो, मेरे नहीं बल्कि एफएम 100 के। अच्छा जनाब, आपके मैसेजेस की जानिब बढ़ते हैं। और जनाब अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं वाले साहब, कैसे हैं? तमाम सुनने वालों को सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम जरीन नूर। आज आपके मैसेज में से संजू कैसे गायब हो गई, हैरत अंगेज बात, वाकई में मुझे बहुत हैरत हो रही है। तो खैर जी, और आगे बढ़ते हैं। वैसे क्या बात हुई, लड़ाई शड़ाई तो नहीं होगी? और सलाम टू यू एंड ऑल स्वीट लिसनर्स, हाउ आर यू एंड हाउ वाज द डे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक था। अम्मी जी और अम्मी जैसी प्यारी सी आंटी और तमाम सुन दोस्तों के लिए ढेरों ढेरों सलामती की दुआएं। और आंसर उन्होंने दिया है, नीम का दरख्त बताया उन्होंने। अच्छा, मैं नाम ले दूंगा और आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपने दुरुस्त बताया या सही गलत बताया। तो दरख्त के बारे में, कौमी दरख्त के बारे में उन्होंने बताया नीम का, और कौमी फल के बारे में उन्होंने बताया आम। तो पहला जवाब आ गया जनाब, अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं। लाला आ गए हैं, अयूब आफरीदी साहब आ चुके हैं और कहने जाने जिगर या हबीबी आपको और सवा गुल को, मुश्क महनूर हिना को और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम वालेकुम अस्सलाम। और मुश्किल आपको जजाय खैर दे। नदीम ने बताया था नाश्ता मजे का था। मुश्क यू आर सो नाइस, यानी कि अब समझ रही है ना। और सबागुल, मुश्क, महनूर और हीना के नाम कोई अच्छा सा सॉन्ग कर दीजिएगा। बिल्कुल, जब हम खैबर पख्तूखा की जानिब जाएंगे तो उस वक्त ये ट्रैक जनाब आपकी जानिब से डेडिकेट हो जाएगा। अक्सा आ गई हैं और कह रही है अस्सलाम वालेकुम। अक्सा, बहुत दिनों के बाद आई हैं, कैसी हैं आप? कह रही है क्या हाल है आपके, तबीयत कैसी है? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुमामीन, आपको भी रखे। तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम अक्सा। और पाकिस्तान का कौमी दरख्त का नाम है देवधर, देवधर है, और फल का नाम नहीं बताया आपने, वो भी बताइएगा। ये अयूब लाला का या अयूब आफरीदी साहब का मैसेज। और सवाल का जवाब है, कौमी फल आम है और दरख्त जो है वो देवधर है। जनाब आपका भी जवाब हमने नोट कर लिया है, सबके जवाब बताते रहेंगे, सही किसका है ये हम बाद में बताएंगे। और मिर्जा साहब कह रहे हैं साठे कि कौम पाकिस्तान का कौमी फल آم اور درخت دیودر ہے. ندیم بھائی ہماری پوٹھوہاری زبان میں دریا والی لکڑ کہتے ہیں, دریا والی لکڑ. ہاں جی پوٹھوہاری تو بول دو یار, کیا بات ہے تو سانجی یار. ندیم بھائی دیودر نام اردو کا ہے, مجھے پتا نہیں تھا لیکن اپنی پوٹھوہاری زبان میں دریا پتا تھا. پھر اے ای سے اس کا اردو میں چیک کر کے, اچھا اے آئے سے کر کے آپ کو بتایا ہے. بالکل درست بتایا آپ نے کہ یہ دریا جو ہے کہ دریا اور اس کے ساتھ لکڑ پوٹھوہاری میں جو ہے وہ دیودھر کو ہی کہتے ہیں. یہ بالکل درست بتایا اس نے. تو اچھا ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز درست بھی ہو, یہ بھی ذہن میں رکھا کریں, تو تصدیق ضرور کر لیا کریں. تو یہ میں نے آپ کو ایک مشورہ دیا ہے, مشورہ. ابھی جائیں گے جناب ایک چھوٹی سی بریک کی جانب.

0: Dash FM 24/7 365.
1: FM 24/7 365.
2: Welcome back, कहेंगे सोने हाँ मैसेजेस तो आपकी मोहब्बतें ऐसी हैं कि कमाल है जनाब. लाला ने कहा है कि कौमी फल आम है. कौन सा आम है लाला, आपसे पूछ रहा हूँ. जरा बताएं तो सही कौन सा आम. ये जरूर बताइएगा आप. हाँ भाई, और संजू क्या कहती हैं. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रुहेमन, बिल्कुल ठीक हूँ रुहेमन, क्या बात है आप. और क्या कह रही है, जबरदस्त गुलदस्ता तमाम सूबों का, हसीन इम्तिजाज, माह आजादी मुबारक हो आपको भी हो. और इन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें लिखी हैं, उनको शामिल करेंगे अभी. मेरी बहुत ही प्यारी शहजादी जरीन नूर, अकाबिल एहतराम नौरीन बहना, शहजादी सबागुल, शहजादी महानूर के लिए बेशुमार दुआएं प्यार. आपकी ये फैमिली हमेशा सलामत रहे, इलाही आमीन. मुश्किल ये कहा क्या कहूँ, सबकी लाडली है. माशाल्लाह से मुझसे नई नई दोस्ती हुई है. अरे हो गई दोस्ती, क्या बात है, नटखट है, बिल्कुल है. और जनाब और कहती है कि आपके प्रोग्राम की रौनकें, ये बहुत प्यारे प्यारे से लिसनर्स हैं. बेशक आपने दुरुस्त फरमाया है. और जो पुरमिजाज मैसेज करके, पुरमिजाह मैसेज करके प्रोग्राम को गुलगुलजार करते हैं, सुनकर बेसाख्ता हसीं कहकहा निकल जाता है माशाल्लाह से. और मेरे कमेंट्स मेरे मिजाज के मुताबिक होते हैं, जो बहुत कम लोगों को पसंद आते हैं. आपकी ये सोच है, ऐसा है नहीं. सबसे पहले तो मैं आपको आपके कमेंट्स के बारे में बताता हूं जो आप लिखती हैं. हकीकत ये है कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और जितने भी सुनने वाले हैं उनको भी बहुत अच्छे लगते हैं. भाई आप जो चंद सत्रों में एक जिसको कहते हैं ना समंदर को कूजे में बंद कर देने वाली बात, वो ऐसी कर जाती हैं कि यकीन मानिए उस पर चर्चा करते हुए जो है अगर मैं पूरे दो घंटे भी लगा दूं तो वो भी कम है. तो आपके मैसेजेस बहुत जबरदस्त होते हैं, लेकिन कभी कभी आपकी शरारतें भी बड़ी अच्छी लगती हैं जो कि आजकल आप नहीं करती. और आगे बढ़ते हैं इनके मैसेज की जानिब. इसका मतलब प्रोग्राम में सारे रंग हैं, शो को चंचल और संजीदगी लिए हुए. मेरा जिन दोस्तों के साथ ताल्लुक है उनके लिए मैं इंतहाई गैर संजीदा हूं. तो जरा हो जाइए संजू, संजीदा से संजू बन जाए. इनके और मैसेजेस भी हैं, वो भी हम शामिल शो करेंगे. लेकिन अभी हम आपको लेके जाना है एक ट्रैक की जानिब. उस ट्रैक की जानिब जाने से पहले मैं आपको हमारा प्यारा खूबसूरत बेहतरीन सूबा जो है, वैसे तो सभी सूबे हैं जैसे कि मैंने आपको बलूचिस्तान के बारे में बताया, तो सिंध सूबा है, सिंध में जहां हम मौजूद हैं, इसका तकरीबन रकबा जो है वो 1,40,914 मुरब्बा किलोमीटर है. आपको बताए, और ये पाकिस्तान जो सिंध, पाकिस्तान का सिंध जो है वो रकबे के लिहाज से तीसरा बड़ा सूबा है. पहला तो आपको मैंने बता दिया बलूचिस्तान है. और सिंध जो है ये मैं कहता हूं कि सकाफत के लिहाज से और उसके साथ साथ जो है तारीख के लिहाज से बड़ा अहमियत का हामिल है. और सिंध में मोहनजोदड़ो है जो कि लाड़काना से करीब वाक़े है. और मोहनजोदड़ो के हवाले से मैंने वैसे सवाल भी करना था, लेकिन मैं आपको इसके बारे में फिलहाल बता ही देता हूं क्योंकि सिंध में पहुंच चुके हैं. तो ये लाड़काना से तकरीबन समझ लीजिए कि कोई 28 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये वाक़े है. और मगरिब की जानिब से, लाड़काना से मगरिब की जानिब अगर आप जाएं तो ये मोहनजोदड़ो पड़ता है. और मोहनजोदड़ो की तारीख पर पूरा प्रोग्राम हो सकता है. और उसके बाद एक और तारीखी जगह जो है मकली, मकली का कब्रिस्तान के बारे में आपने सुना होगा, वैसे कराची के करीब भी है, ठट्ठा करीब है. और तारीखी मकबरों और इस्लामी फन तामीर का इस वक्त जीता जाता जागता सबूत है. इसकी जो हालत है वो अगर आप देखें तो आप कहें क्या बात है, ये जब असल में बना होगा तो कैसा होगा. और ठट्ठा में ही जो है शाहजहां मस्जिद भी है, یہ میں آپ کو سندھ کے حوالے سے بتا رہا ہوں تمام چیزیں جو خوبصورت وہاں پر یہ تاریخی مسجد ہے. اگر کبھی جانا ہو ٹھٹھا تو یہ دو جگہیں ضرور دیکھیے گا. پھر رانی کوٹ کا قلعہ ہوئے ہوئے ہوئے کئی گانے وہاں پر شوٹ ہوئے ہیں اور دنیا کے بڑے قلعے نما آثار میں یہ شمار ہوتا ہے رانی کوٹ کا قلعہ. اور اس کے علاوہ جھیل, اب میں ان کی تفصیل نہیں بتاؤں گا بس جھیلوں کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ اس حوالے سے سوالات بھی بہت دماغ میں ہیں. منچھر جھیل جو ہے جامشورو کی طرف ہے, اسی طرح کینجر جھیل جو ہے وہ ٹھٹھا کی جانب ہے. تو ٹھٹھا میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ وہاں پر موجود ہیں. اور ایک اور ایسی جگہ جو کہ اب لوگوں کو سوشل میڈیا کی وجہ سے پتہ چلنا شروع ہوئی ہے, گورکھ ہل کے بارے میں آپ نے اب سنا ہوگا. یہ دادو کے پاس ہے اور پہاڑی علاقہ ہے اور انتہائی ٹھنڈا ہے, اور اتنا ٹھنڈا ہے کہ وہاں پر برف باری بھی ہوتی ہے. اور اس کے بعد جناب سندھ کا ایک اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی جو ہے وہ بھی سندھ میں جو ہے وہ موجود ہے. کھانوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے, ویسے تو کھانے جو ہیں وہ اب ہر طرح کے کھانے جو ہیں ہر جگہ ملتے ہیں, مگر سندھ کے جو کھانے مشہور ہیں وہ تو سندھی بریانی, پلو مچھی سائیں پلو مچھی, اور مچھلیاں جتنی بھی ہیں سمندری, مطلب سی فوڈ بہت زیادہ وہ سال سمندر کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پاپولر ہے. اور دودھ اور دہی جو ہے وہ یہاں کا پورے پاکستان میں جو ہے اس کی بات ہے جناب. تو اور اس کے ساتھ ساتھ بریانی کی تو خیر بات ہو ہی گئی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ حلیم کراچی کی کیا بات ہے, ایسی حلیم آپ کو پورے پاکستان میں اور کہیں نہیں ملے گی. تو اسی بات پر جناب آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں سندھ کی جانب. ایلو پھڑو

Flash FM 24/7 365. FM 24/7 365.

वेलकम बैक कहेंगे जनाब। मोरटोर दिल्ले राणा सिंध की सैर की आपने, कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। और मैसेजेस आपके आ रहे हैं कि चाहे स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं 3636 पर। आज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बाहिंदाबाद। जनरल नॉलेज के हवाले से सवाल जो मैंने किया है कि पाकिस्तान का कौमी फल कौन सा है और पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है, जवाब आपके आ रहे हैं और ये नहीं बताऊंगा कि दुरुस्त आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं। बढ़ेंगे आपके मैसेजेस की जानिब। और अयूब लाला से पूछा था कि उन्होंने कहा था कि आम कौमी फल है, तो आम कौन सा लाला ये आपने बताना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नदीम भाई, कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, कुछ मसरूफियत की वजह से 11 दिन के बाद शामिल हो रहा हूं। हाजिरी कबूल हो? कबूल है, कबूल है, कबूल है। शहजादे अपना नाम तो लिख दो। और फरहान भाई कह रहे हैं हमारे कि नदीम भाई आज मेरे पास एक सवाल है। क्यों है? आप लिसनर से पूछें क्वेश्चन, हु इज फर्स्ट पाकिस्तानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मैन एंड वुमन? प्राइम मिनिस्टर, ओके। अच्छा जी, पाकिस्तान का पहला नायब वजीर आजम कौन था? औरत और मर्द दोनों का

मैन एंड वुमन, ठीक है ना, ये पूछा था मेरी बहना, इस सवाल को अभी रहने दो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी नहीं, ये हम बाद में करेंगे सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल है। अच्छा भाई, शनाया माही भी आ गई है, मेरी बहना कह रही है अस्सलाम वालेकुम मैंने भाई, कैसे हैं आप और आपके बाबूजी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। बाबूजी के लिए वैसे थोड़ी सी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनके पेट में हल्की फुल्की दर्द हो रही है, दुआ जरूर कीजिएगा मेरे बाबूजी के लिए। और शनाया का प्यार भरा सलाम, अच्छा सा सॉन्ग मेरी तरफ से सबको डेडिकेट कर दीजिएगा। बिल्कुल कर देंगे। समी शहजादे कहाँ गायब थे, आ गए हो आखिरकार। और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, सलाम टू ऑल लिसनर्स। फल में वो कह रहे हैं मैंगो। मैंगो तुम्हें कैसे खाना पसंद है समी, जरा ये बताना। समी से थोड़ी सी तफरी करता हूँ मैं। और हमारी एक और प्यारी सी बहना फैसलाबाद से आ गई है, कह रही है अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे मिजाज हैं? ढेरों दुआएं दी है उन्होंने, पाकिस्तान का कौमी दरख्त उन्होंने बताया देवदार, और पाकिस्तान का कौमी फल इन्होंने बताया आम। प्यारी सी बहना संजू को सलाम, और अच्छा सा सॉन्ग डेडिकेट कीजिएगा, एक शो की रौनक है संजू बेशक, और मोश्क लाला जब तक शो में शिरकत ना करें फीका फीका सा लगता है। हैं जी, हैं जी, क्या बात है जी। वैसे गल सही है, दुरुस्त है जी, दुरुस्त है, आप लोगों की मोहब्बतें हैं ना नालो नाल। संजू क्या कह रही हैं? और क्या कहती हैं? कहती हैं सॉन्ग सिलेक्शन बहुत खूब है, बिल्कुल भी बोरियत नहीं हो रही, आपका पुरजोश अंदाज सुनकर पाकिस्तान की शदीद वाली मोहब्बत महसूस हो रही है। थैंक यू वेरी मच। नाराज तुम नाराज हम, मुझे गाना याद आ रहा है। अच्छा जी, लाला सरदर्द में जो टैबलेट ली थी वो हर जगह नहीं मिलती, कुछ बातें भी ही तासीर का काम करती हैं। बेशक दुआओं के साथ मेरे अच्छे लाला शारदी लाला तुसी भी, यानी कि समझ रहे ना। तो हमें बता देती वो टैबलेट के साथ साथ, वो टोटका ही बता देती जरा हमको भी। चलिए जी, इसी बात पर आपको लेकर जा रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त से हम मिली नगमे की जानिब, और उम्मीद करते हैं कि आप सबको पसंद आएगा। हेलो फटो

Welcome back, Sunil Chand mere zameen phool mera vatan. Beautiful track. क्या बात है हमारे पाकिस्तानी कौमी गीतों की. और जब भी सुने आप पुराने से पुराना कौमी नगमा सुने और नए से नया कौमी नगमा सुने, वाह वाह वाह वाह, स्वाद आ जाता है जनाब, स्वाद. अच्छा जनाब, समी कह रहे हैं कि देवदर ट्री का नाम है. अल्लाह पाक आपके वालिद साहब को जल्द से एहतियाबी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन. और कहते हैं कि मैं आम इतने दिल से नहीं खाता, मुंह से खाया कर मेरे शहजादे, अच्छा लगेगा. अच्छा जी, और उन्होंने कहा है कि गाने सारे अच्छे चल रहे हैं नदीम भाई, एक कौमी गीत जो है मेरी जानिब से डेडिकेट कर दीजिएगा सबको. बिल्कुल कर देंगे. और अरे बाबूजी नहीं है, बाबूजी हैं. ए बाबू होता है ना, बाबूजी. और बाबूजी भी वैसे कहते हैं लेकिन हम बाबूजी कहते हैं. तो बाबूजी को अल्लाह पाक शिफा के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन सुमामीन. थैंक यू सो मच संजू. और नौरीन भैना, बहुत सारा प्यार, सलामत रहें. रोहिमा ने एक साल मुकम्मल हुआ है जरीन, और हमारी दोस्ती को माशाल्लाह से ये सब आपकी वजह से प्यारी जरीन मिली हैं. नहीं, आप लोग सब खुद बहुत अच्छे हैं, और कोई बात नहीं, यानी कि समझ रहे हैं ना. हां जी, तो जरा दोबारा लिखो संजू. बाबूजी हैं जी, जी हैं जी. और शनाया कह रही हैं अल्लाह पाक आपके बाबूजी को सेहत और सलामती, अच्छी सेहत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन. और तमाम बीमारान को भी अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए. बहुत बहुत शुक्रिया शहजादी. और पूरी दुनिया में जब कहीं रोड बनता है तो पहले अंडरग्राउंड लाइन्स न्यू डाल दी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है जहां पहले रोड बनता है फिर न्यू लाइन्स के लिए न्यू रोड को खोद दिया जाता है. तो ये आपको आज पता चला है? ये तो अरसा दराज से, जब बचपन से देखता आ रहा हूं मैं, बचपन से. यकीन माने. अच्छा जी, हमारे लेजेंड सिंगर मोहतरम जावेद अख्तर साहब आपके वालिद मोहतरम को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए. मिर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. हम सब की दुआ है कि अल्लाह पाक उनका साया आप पर हमेशा रखे. हमारा कौमी असासा है और पाकिस्तान का फख्र है वो. बहुत शुक्रिया खूबसूरत लफ्जों का, बहुत शुक्रिया. और जनाब, हाय हाय, उफ अल्लाह जी, बाबूजी सॉन्ग जरूर दिल चाह रहा है बाबूजी का. चलेगा जनाब, हम खैबर पख्तूनख्वा तो पहुंच जाए अभी, यानी कि समझ रहे हैं ना आप. हाँ जी समझ रहे हैं. वो जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपकी जुस्तजू, शिद्दत, बेसब्री जो है उसको बढ़ा देती है. वो क्या है बताएं? ये अहम ही सवाल किया मैंने. अच्छा जनाब, और मेरा ख्याल है मैसेजेस आपके काफी आ रहे हैं, तो अब क्यों ना आपको एक पंजाब की जानिब लेकर जाया जाए. और पंजाब की जानिब जाना है तो कुछ पंजाब के बारे में भी आपको बताएं. पंजाब हमारा सूबा, बेहतरीन सूबा. अच्छा, आपको बड़ी मजेदार और बेहतरीन बातें बताऊंगा इस पंजाब के हवाले से. पंजाब का रकबा जो है वो तकरीबन 205,344 मुरब्बा किलोमीटर है. और मैंने जैसा कि सिंध के हवाले से आपको बताया था, सबसे बड़ा सूबा मैंने आपको बताया बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान का मैंने आपको रकबा भी बताया था. बलूचिस्तान का सबसे ज्यादा रकबा जो है वो पाकिस्तान में है कि 347,190 मुरब्बा किलोमीटर पर है. और पाकिस्तान की जो आबाद, मतलब जो रकबा है, उसके एतबार से 44% जो है वो बलूचिस्तान ने घेरा हुआ है भाई फुल टाइम. और उसके बाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सूबा मैंने आपको बताया था वो सिंध बताया था, 140,914 मुरब्बा किलोमीटर पर ये है. और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सूबा है. और पाकिस्तान का जो दूसरा बड़ा सूबा है वो है सूबा है पंजाब, 205,344 मुरब्बा किलोमीटर. और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा सूबा है. हैं जी, ते हैं जी.
और पंजाब जो है वो भी हेरिटेज जो है उसकी बहुत ही मशहूर है, और ये मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जितने ज्यादा नहीं है, मगर पंजाब में भी एक ऐसा जगह है जहां पर बहुत पुराना सिलसिलाकार है। बादशाही मस्जिद तो खैर आप सबको मालूम ही, मुगलिया दौर की तैयार करदा बादशाही मस्जिद वहां पर मौजूद है, और पाकिस्तान के हवाले से एक तारीखी मकाम वहां पर मौजूद है जिसको कहते हैं मीनारे पाकिस्तान, और पाकिस्तान की तारीख की ये यादगार है जहां करारदार पाकिस्तान जो है मंजूर होने के बाद जो है मीनारे पाकिस्तान उसकी यादगार के तौर पर जो है वो तामीर हुआ था। लाहौर का किला ये भी मुगलिया दौर का है, बहुत मशहूर है, तारीखी किला है। मैं आपको सिर्फ नाम और थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूं क्योंकि ये ऐसी जगहें हैं, ऐसे मकाम हैं कि इनके बारे में अगर मैं आपको इनकी तफसील बताना शुरू करूं ना तो आप यकीन मानिए कि 2 घंटे भी कम पड़ जाएं और गाने भी ना चलें तब भी आपको मैं इनके हवाले से बताता रहूं, बादशाही मस्जिद के हवाले से, लाहौर के किले के हवाले से, फिर शालामार बाग जो है वो भी तारीखी बाग है, खूबसूरती की इंतहा है। जब भी आपका लाहौर जाना हो तो ये तारीखी मकामात जरूर देखें, ये आपको लाहौर में ही मिल जाएंगे, लाहौर के आसपास ही मिल जाएंगे। बादशाह मस्जिद तो लाहौर में ही मिल जाएगी, मीनारे पाकिस्तान भी मिल जाएगा, किला भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, शालामार बाग जो है वो भी लाहौर में आपको मिल जाएगा। उसके बाद पंजाब में जो है एक तारीखी शहर जिसको कहते हैं टैक्सिला, ठीक है जी, और निहायत जो है ये कदीम शहर है और आसार कदीमा के जैसे मैंने मोहनजोदड़ो का जिक्र जो किया था जब सिंध की जानिब हम गए थे, तो इसी तरह ये टैक्सिला जो है ये भी कदीम तहजीब की निशानियां जो हैं वहां पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ पंजाब में एक और ऐसा एक जगह है कि जिसके बारे में आप लोगों को पता तो होगा मगर उसकी अहमियत जो है वो शायद मुकम्मल तौर पर आपको ना पता हो, तो जरूर रिसर्च कीजिए और इसके बारे में जानिए, पाकिस्तान के बारे में जानिए। यकीन माने कि हमारा ये मुल्क जो है पाकिस्तान, अगर इसकी तारीख के हवाले से, इसकी मादनियात के हवाले से, इसकी जगहें जो हैं, हमारे हेरिटेज जो हैं, हमारी कदीम तहजीबें जो यहां पर मौजूद हैं, अगर आप इनका मुताला करना शुरू करेंगे ना तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान से अच्छा मुल्क, बेहतरीन मुल्क पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। खैर जी, बढ़ते हैं आगे, खेवड़ा की जानिब जाते हैं। ये नमक की कान है जो कि जेलम के पास है और जेलम में मौजूद है। खेवड़ा की जो कान है दुनिया की मशहूर नमक की कानों में ये शुमार होती है, और यहां का जो नमक है दुनिया के बेहतरीन नमक जो मादनियात में जो नमक की काने हैं उनमें दुनिया का जो बेहतरीन नमक है वो खेवड़ा का नमक है। और ये किस कलर का है, कलर मुझे याद नहीं आ रहा, ऑरेंज टाइप का या येलोश टाइप का इसका एक नमक है वो, या रेडिश टाइप का है वो, बहुत ज्यादा जो है वो कीमती और मशहूर है, और दुनिया की जो बड़ी नमक की काने हैं उनमें इसका शुमार होता है। उसके साथ साथ जनाब दर्राए चोलिस्तान और किलाए दरावाड़, ये जो है ये सहरा और तारीखी किले जो हैं वो उसके नाम से ये मशहूर हैं, और इनकी भी एक तारीख है, वो भी मैं आप बताऊंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो और खैर खाने पीने में तो पंजाब जो है वो क्या बात है उसकी, मतलब वैसे तो सारे सूबे ही हैं लेकिन खाया यहां ज्यादा जाता है, उसकी वजह ये कि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा यही है। और इससे पहले कि मैं यहां के खानों के हवाले से बात करूं, कराची यानी कि सिंध की एक और जबरदस्त सौगात जो है वो मेरे जहन से ही निकल गई, वो है निहारी। निहारी जैसी कराची में वहा भाई और कहां है भाई। खैर जी, वहां पर पंजाब में जो है वो पंजाबी वहां का पुलाव जो है वो बड़ा मशहूर है, साग पुलाव भी वहां का बड़ा मशहूर है, मकई दी रोटी, सरसों दा साग, क्या बात है। मटन कुन्ना जो है वो भी वहां
का जो है वो बहुत पॉपुलर डिश है। वहां पर कढ़ाई बनाने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, हर बलूचिस्तान का भी कढ़ाई वो बलोची कढ़ाई, यहां पर जो है वो पंजाबी कढ़ाई, ठीक है ना। लेकिन जो ट्रेडिशन है उसके हवाले से मैं चंद डिशों के मैंने आप लोगों को नाम बताए। तो अब मेरा ख्याल है फौरन से पेशतर आपको लेकर चलते हैं ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक है जनाब पंजाब पहुंच चुके हैं तो पंजाबी ट्रैक है, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा।

Welcome back. Live Kadrana Yari Titutuke Tarak Karki. Beautiful track. Acha, mere most favorite tracks mein se ye hai. Ye Tufail Niazi sahab ka basically originally gaya hua hai. Ye Punjab ke bahut bade jo hain wo gulukar the, lok fankar. Aur Tufail Niazi sahab ko zarur suniye jo music lover hai. Aur. Acha janab. अच्छा भाई एमी जवाब क्या दूँ एमी सवाल दोबारा बताएं अच्छा जनाब आगे बढ़ते हैं ये जनाब संजू का मैसेज था एमी वाला जिसमें उन्होंने लिखा है एमी अच्छा आगे बढ़ते हैं और नमान भाई कह रहे हैं कि आप अपने वालिद को बाबूजी कहते हैं जी बिल्कुल और हम अपनी वालदा को आपी कहते हैं मगर आपी अच्छा आपी कहते हैं अच्छी बात है ये मोहब्बत के प्यार के नाम है जनाब माशाल्लाह नदीम भाई बहुत खूब आपने पाकिस्तान के तमाम सूबों की खसूसियात और तारीख हम सब से शेयर की आपका बेहद शुक्रिया अभी तो आगे बढ़ रहे हैं शोनियों एक ऐसी चीज भी आप लोगों को बताऊंगा जो कि मैं समझता हूं कि बहुत कम पाकिस्तानियों को पता है अभी ये पाकिस्तान के हवाले से बता रहा हूं अभी तो हम सिर्फ पंजाब तक पहुंचे हैं अब आगे बढ़ रहे हैं जनाब केपीके की जानिब जाएंगे हमारे लाला खुश हो जाएंगे हैं जी और कराची की बिरयानी बहुत भूल गए नदीम भाई अरे नहीं भैया बिरयानी बता चुका हूं मैं पहले ही बता चुका हूं बिरयानी बता चुके हैं भाई आपको बिरयानी बहुत पसंद है मेरे को पता है अच्छा जी बाबूजी अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला और आजला अता फरमाए हर बीमारी और तकलीफ को दूर फरमाए और आपको हमेशा सलामत और खुश और तंदुरुस्त रखे आमीन शुभ आमीन हमारी दुआएं आपके साथ हैं अल्लाह पाक आपको जल्द मुकम्मल सेहत अता फरमाए आमीन और उनकी आवाज में कोई अच्छा सा सॉन्ग हो जाए जी बिल्कुल होएगा डोंट वरी मैंने पाकिस्तान के चारों सूबों की सैर की हुई है और खूब इंजॉय किया है माशाल्लाह माशाल्लाह भाई नौरीन महना का ये मैसेजेस मैंने पढ़े हैं और क्या बात है आपकी सलाम भैया मैं फरीदा बुरहानुद्दीन हूं कैसे हैं आप तबीयत कैसी है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक कौमी फल आम और कौमी दरख्त खजूर का दरख्त है और आपके अब्बा जी को अल्लाह ताला जल्द शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए आमीन सुम आमीन और आसानियां पैदा करे आमीन बहुत बहुत शुक्रिया फरीदा बुरहानुद्दीन अलीमुद्दीन यूसुफजई साहब भी आ गए हैं और कह रहे हैं मेरे प्रोग्राम में शामिल कीजिए मेरे मैसेज को वाजिबुल एहतराम मोहतरम नदीम अख्तर भाई साहब अस्सलाम वालेकुम प्लीज नूर जहां या सज्जाद अली की आवाज में कोई गाना सुनवा दीजिए नहीं सुनाएंगे और अयूब अफरीदी साहब समी शेख नसीम कुरैशी खिताबुल लाला इमरान रियाज और आपके वाजिबुल एहतराम वालिद मोहतरम की खिदमत अकदस में मेरा अकीदत भरा सलाम पेश कीजिएगा हर लम्हा दुआगो ने ख्वाहिशात के साथ अलीमुद्दीन यूसुफजई साहब एफ बी एरिया कराची से अच्छा मैं काफी दिनों से एक बात सोच रहा था मगर मैं भूल गया और अक्सर भूल जाता हूं कई महीनों से सोच रहा था हमारे नसीम कुरैशी साहब अगर सुन रहे हो तो उनको मैं एक बात बताना चाह रहा था वो बात ये बताना चाह रहा था कि वो एक दफा मैंने इसी तरह 14 अगस्त या किसी इसी नेशनल डे के ऊपर ही किस पे मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें इनामात भी तकसीम हुए थे और उसमें पार्टिसिपेशन जो है इनामात के हवाले से नसीम कुरैशी साहब ने भी किया था और उन जो इनाम के हकदार थे जो लोग जीते थे गिफ्ट्स में नसीम कुरैशी की जानिब से भी गिफ्ट थे मेरी जानिब से भी थे और क्राफ्ट वेयर हाउस से हमारी प्यारी सी स्नेहा अब उन्होंने हैंडमेड जो है कुछ गिफ्ट दिए थे तो उस वक्त FM 100 सब आए थे तो मुलाकात भी हुई थी नसीम साहब के पास वो मुझे अपना नंबर भी देकर गए थे अब इत्तेफाक ऐसा है कि वो नंबर जो है वो मोबाइल जो है वो हुआ खराब तो उसके बाद उसको रीसेट करते हैं तो जब रीसेट किया गया तो बहुत बेतहाशा नंबर जो है वो गुम हो गए जिसमें नसीम कुरैशी साहब का भी नंबर था तो अगर वो सुन रहे हों तो ये जहन में रखिएगा कि मेरे पास आपका अब नंबर नहीं है वरना मैं उनसे कांटेक्ट जरूर करता और जनाब रूहेमन कैसी हैं आप रूहेमन कह रही हैं कि लाला को पिशावर छोड़कर आना है यानी कि समझ रहे हैं ना अभी पिशावर छोड़कर आ रहे हैं जनाब
بے فکر ہو جائیں, ابھی ہم لے کر جائیں گے, ساتھ لے کر جائیں گے, اور جتنے بھی میرے پیارے پیارے سے لسنرز ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے. مگر ابھی جو ہے میسیجز تو خیر یار آپ لوگوں کی محبتیں اور پیار اتنا ہے کہ جس کے ہرنے مشک آ گئی ہیں. مشک کیا کہتی ہیں, کہتی ہیں اوہو بہت کچھ کہہ رہی ہیں بھائی. یہ تو مشک آج پتہ کیا تھوڑا سا انفارمیٹو پروگرام ہو رہا ہے تو لہذا ناراض مت ہونا. بہت سارے مشک کے پیارے پیارے سے میسیجز ہیں, وہ شامل میں نے نہیں کیے تھے لیکن ابھی آ گیا ہوں اس طرف. چاچو اگر کسی سے ناراض ہونے کو دل کر رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ہینڈسم سے تو بالکل بھی نہیں ہو ہوں, نہ ہی کٹی نہ ہی کٹا. تو دنیا کو سانگ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, کوئی نہیں بھی بولے تو میں تو بھی کرتے ہیں, اتنے معصوم ہیں میری طرح, ویسے دل کے اچھے اور پکے ہیں. تھینک یو. میں سمجھ رہا ہوں مشک تمہاری ساری بات ہے, تمہیں گانا ڈیڈیکیٹ کریں گے ہم, ڈونٹ وری. اچھا یہ مشک اپنے میسیجز محفوظ رکھنا, یہ ہم اگلے شو میں ضرور شامل کریں گے کیونکہ ہنسی مذاق والے بڑے مزیدار قسم کے میسیجز ہیں. اور ہینڈسم ارے بھائی اس میں دھمکی بھی آئی ہوئی, اگر سارے کمنٹس نہیں پڑے تو یاد رکھیں مش آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی, جلنے والوں کا منہ سفید پھیکا ہو جائے گا. چلو جی میں تمہارے سارے میسج شامل کروں گا لیکن کچھ ٹائم لگے گا, تم سنتی رہو یعنی کہ سمجھ رہی ہے نا. اچھا جی ہینڈسم سچی میں نے بھینس چوری کی ہے اور اچھا اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور اکلوتے دل سے سبا گل مہانور سلیم بھائی نانا اور انعام بھائی تایا امین ماموں سمی دولا بھائی نورین آنٹی اور زرین نور, یہ اتنے سارے نام کیوں لکھے ہیں میں نے ہینڈسم. اچھا یہ ہمارا آپ کے شو کا مقبول فیملی گروپ ہے, زبردست اچھے مزیدار قسم کے میسیجز. اور جناب میسج تو آپ کے بے تحاشا ہیں جو کہ شامل شو بھی کرنے ہیں مگر کیا کریں جناب, گانے کی جانب بھی جانا ہے تو ابھی آپ کو لے کر جا رہے ہیں ہم ایک بہت ہی پیارے سے ملی نغمے کی جانب, اور یہ ہم سمی کی جانب سے ڈیڈیکیٹ کریں گے سب کو. ایلو پھڑو

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो इश्क वतन इश्क वतन क्या बात है भाई। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आया होगा। फौरन से पेशर आपके मैसेजेस की जानिब जा रहे हो। मैं चाह रहा हूं कि जो पाकिस्तान के हवाले से चारों सूबों के हवाले से जो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं वो कंप्लीट हो जाए, ऐसा ना हो कि बीच में ही रह जाए और वक्त फुर करके उड़ जाए। तो फौरन से बेशतर आपके मैसेजेस की जानिब। पाकिस्तान बाजार से रेहाना मेरी प्यारी सी बहना आ गई हैं, सलाम की बात कह रही हैं कि आंटी को, चाची को, जरदारी साहब को और इमरान भाई को, सबको कह रही हैं आई मिस यू, मिस यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10। मैंगो किंग, किंग्स ऑफ फ्रूट नेशनल, पाकिस्तान नेशनल फ्रूट और नेशनल ट्री जो है वो देवदार है। बिल्कुल सही बताया जनाब आपने, दुरुस्त बता दिया आपने, क्या बात है आपकी। खैर जी, मैं नाम ले रहा हूं, ज्यादातर जो मैं आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं वो आम और देवधर आ रहे हैं और इसका दुरुस्त जवाब है या गलत जवाब है ये बाद में दूंगा, वो मैं जल्दी जल्दी में बोल देता हूं खुश करने के लिए। और आज दिल कर रहा है कि कोई गहरी बात करूं पर सोचता हूं कि अगर उसमें डूब कर मर गया तो क्या होगा। ये सलीम मेमन कर ना कर भाई गहरी बात है। अच्छा जी, सुनियो दानिश के वालिद गुलबहार से आपको सुन रहे हैं, उनको मेरा सलाम और एक मिली नगमा, ये वतन तुम्हारा है। सलीम मेमन साहब फरमाइश नहीं हो रही, मिली नगमा उनको जरूर डेडिकेट करेंगे। दानिश के वालिद मोहतरम आपको हम सलाम अर्ज करते हैं सलीम मेमन की जानिब से भी और अपनी जानिब से भी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का और आपके लिए मिनी नगमा जरूर चलेगा। और बादशाह कह रहे हैं सलाम नदीम भाई, ये मेरी तरफ से किसी नामालूम के लिए, नामालूम के लिए तो मैं कुछ पढ़ता ही नहीं हूं। और आपके वालिद साहब को अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, मेरी प्यारी सी बहना जरीन नूर कह रही हैं। और अमीन कह रहे हैं मुश्क बहना मेमन क्यों कहा। अच्छा नहीं, इसका एक मैसेज था वो कहां गया। हाँ ये रहा, नदीम भाई आप अपने चार्ली भाई से थोड़ा थोड़ा नाराज से लग रहे हैं, मैंने कई बार नोट किया है, अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत ख्वाह हूं। अरे मेरे शहजादे, मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी, मैसेजेस बीच में से थोड़े थोड़े से ना मैं एडिट करता रहता हूं, समझा करो इस बात को, जो पढ़ने वाली चीजें होती है मैं सब पढ़ देता हूं, लेकिन जिस बाद में मुझे ऐसा फील हो रहा हो कि ये यार जरा रोक दो ये ना पढ़ो तो वो मैं नहीं पढ़ता, तो लिहाजा शायद आपको इसीलिए ये फील हुआ होगा कि यार नदीम भाई ने मेरी बीच में से ये वाली लाइन खा ली। ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं आपसे, सही है। अच्छा तो अब ये कह रहे थे कि मुश्क बहना मेमन क्यों कहा भाई हूं, मैं मेमन नहीं भाई हूं, भाई भाई कहा करो मुश्क, और मेमन नहीं आप नानी चुड़ैल हो बस। और लाला कहते हैं मुश्क संजू से दोस्ती पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह आपको सर के दर्द से बचाए, आमीन सुमन। हर एक को बचाए लाला, सिर्फ इनको नहीं हर एक को बचाए, ये मेरी दुआ है। और वकीद आ गए हैं जनाब, अस्सलामु अलैकुम कह रहे हैं और कह रहे हैं नदीम भाई क्या हाल है आपका और भाई की हाजिरी कबूल करें। इन्होंने नौकर लिखा था तो कभी भी ये नहीं लिखना, आप हमारे भाई हैं तो आपकी हाजिरी सर आंखों पर जनाब। और सबीन कुरैशी आ गई हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं, सबीन कैसी हो, वालेकुम अस्सलाम। रुहमान शरारती मोड संजू हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। मुझ कहती हैं ओके बॉस, शो बहुत आला माशाल्लाह से हैंडसम, थैंक यू। और इसका एक मैसेज और पढ़ते हैं नालो नाल। संजू ने क्या भैंस चोरी की है जो हमने याद नहीं किया, सॉरी हैंडसम पहले भी कहा था, क्यूट मुश्क की जानिब से आपका फेवरेट सॉन्ग संजू के नाम अलॉट कर दें। बिल्कुल हो जाएगा, पहले अभी जो चल रहा है ना उसको चलने दो। कह रही पिछली बार में नहीं किया था यार मुश्क, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक की है, तो मैं ये यहां पर लिख लेता हूं मुश्क की जानिब से, ये नाराज ना हो जाए ताकि मुश्क
ने संजू को डेडिकेट किया। बिल्कुल कर देंगे। अच्छा भाई, और उसके साथ ही शनाया कहती हैं शो ऑसम है, बहुत शुक्रिया आपका, तारीफ हो रही है भाई, इन्फॉर्मेशन भी अच्छी दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। और नवान भाई कह रहे हैं दरख का तो पता नहीं लेकिन कौमी फल, ये भी बड़ी जबरदस्त बात की है, तो मैं आखिर में बोलूंगा, ये बड़ी जबरदस्त बात की है। ओके टेक। और सभी ने शुक्रिया अदा किया है। और वकीद कहते हैं FM 100 की पूरी फैमिली को सलाम। और अब आगे बढ़ते हैं जनाब, हम सिंध से पंजाब पहुंचे और पंजाब से अब हम पहुंचेंगे KPK। लाला गौर से जरा सुनना, कुछ ऐड वैड करना हो तो कर दीजिएगा। अच्छा, अभी पाकिस्तान का चौथा सूबा रकबे के एतबार से भी चौथे नंबर पर है और इसका रकबा जो है वो तकरीबन 1,01,741 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से भी ये पाकिस्तान का छोटा सूबा है, सबसे छोटा। और यहां की मशहूर जगहों के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, बेशुमार हैं, बेशुमार हैं तारीख के लिहाज से भी। और सबसे जो मशहूर है स्वात है, खूबसूरत पहाड़ों, दरियाओं, वादियों का जो है वो एक समझ लीजिए कॉन्टिनेंट है ये। वाह वाह वाह वा। और फिर उसके बाद कागान, नारान, चतराल, कलाम, मालम जब्बा, ये तमाम नाम सबको बताऊंगे। यहां से पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो घूमने जाते हैं, सरसब्ज पहाड़ और दरिया, मैं कहता हूं खूबसूरत वादियां, झीलें, कुदरती मनाजिर से भरपूर, जिसको कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इसको जो है वो हमारे लिए जो है तोहफा अता फरमाया हुआ है। मालम जब्बा के हवाले से मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि स्केटिंग जो होती है, बर्फबारी में जो स्केटिंग होती है, तो मालम जब्बा में सबसे बड़ा ट्रैक पाकिस्तान का वहां पर है। जो स्केटर्स हैं वो जब सर्दियां होती हैं, बर्फबारी होती है, तो वो मालम जब्बा जरूर जाते हैं और वहां से स्केटिंग का सिलसिला होता है। और सबसे बेहतरीन जो वहां की जो तफरी है वो यही है मालम जब्बा की। और किला बालासार के बारे में आपने सुना है? नहीं सुना, हम आपको बताते हैं। पिशावर में मौजूद तारीखी किला बालासार है। और आप ये देखें कि हर सूबे में हमारे अल्लाह ताला ने क्या क्या नेमतें छुपाई हुई हैं। और मकबरा खुशहाल खान खटक जो है ये भी तारीखी अहमियत का हामिल है। और खुशहाल खान खटक की तारीख अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िएगा, और बहुत बड़ा एक नाम है हमारे पाकिस्तान का। और वैसे खानों में कमाल के खाने यहां पर, वहां के चपली कबाब, पिशावरी कड़ाही जो है बेसिकली ये मेड वहीं की है, कड़ाही जो हम खाते रहते हैं ना, अब ये बलोची कड़ाही, सिंधी कड़ाही और पंजाबी कड़ाही, हर एक ने अपने अपने सूबे का उसमें रंग भर दिया है, मगर ओरिजिनली कड़ाही जो है वो पिशावरी कड़ाही ही कहलाती है। और वहां का जो नमक मंडी है पिशावर का, ये बहुत ही पॉपुलर है। नमक मंडी की जो कड़ाही है, टिक्का है, बारबेक्यू यू कैन से, कि वहां का पूरे पाकिस्तान में जो है वैसा जायका आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और पुलाव जो है, चना पुलाव, वाह वाह वाह वाह वाह। काबली पुलाव तो खैर काबली हो गया वो तो, लेकिन ये कि क्योंकि अफगानिस्तान भी करीब है, सो दैट्स वाई थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है, तो सो जो पुलाव है वहां का मशहूर पुलाव तो खैर चना पुलाव है, बट ये कि काबली पुलाव भी वहां पर जो है वो बहुत पॉपुलर है। तो मैं थोड़ा सा मुख्तसर करके बता रहा हूं क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। तो अब जनाब आपको खैबर पख्तूनख्वा लेकर जा रहे हैं हम, और एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानिब। और ये ट्रैक जो है ये स्पेशली हम डेडिकेट भी करेंगे जनाब अयूब आफरीदी की जानिब से। उन्होंने कहा था कि जी ये हेना गोल खो, सबा गोल खो, मानोर खो, ये स्पेशली डेडिकेट करना है। और सबा ने भी कहा था कि जावेद अख्तर साहब का अगर कोई गाना लाला को अगर डेडिकेट हो जाए तो क्या बात है। तो आप दोनों की जानिब से जनाब ये प्यारा सा ट्रैक जावेद अख्तर साहब की आवाज में, जो कि वजह शोहरत भी बना था जावेद अख्तर साहब की, बेसिकली ये पश्तो में गाया था उन्होंने,
اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ کر کے یہ اتنا پاپولر ہوا نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں بہت پاپولر ہوا. تو آپ کے سماعتوں کی نظر ایلو پھڑو.

वेलकम बैक। तुझको कसम है मेरी नया नात खाली, आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली। लेकिन इन्होंने जावेद अख्तर साहब स्पेशली अयूब अफरीदी के लिए ये थोड़ा सा बोलों में चेंज किया। एक हसीना की निगाहों का निशाना बन गया। वाह वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। आई होप कि जनाब आपको ट्रैक भी पसंद आया होगा। और इसके साथ ही मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा से थोड़ा सा पीछे लेकर जा रहा हूं और जनूबी पंजाब की जानिब भी लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर जनाब वहां के जो जनूबी पंजाब है, वैसे तो काफी हद तक कराची में भी आकर आबाद है जनूबी पंजाब, लेकिन सरायकी गाना सही उसके बगैर तो पूरा नहीं होता ना कुछ। लेकिन सरायकी गाना सही तवाजी लिए

वेलकम बैक कहूंगा जनाब। अस्सलाम वालेकुम आओ जी। हैं जी तो हैं जी, वक्त बड़ा महदूद सा रह गया है जनाब। चारों सूबे तो आपको घुमा दिए हैं, मगर आप लोगों के लिए सरप्राइज भी है। लेकिन उस सरप्राइज से पहले आप लोगों को सवाल का जवाब दे देता हूँ। सवाल का जवाब आप सबने बिल्कुल दुरुस्त दिया जनाब। पाकिस्तान का कौमी फल आम है और दरख्त का नाम भी आप लोगों ने दुरुस्त बताया देवधर। और अब आगे बढ़ता हूँ जनाब। सलीम अमन साहब क्या कह रहे हैं सुनो, मेरा आपको एक मशवरा है कि आप एक कश्ती बुक करवाएं और एफएम के जितने भी लिसनर हैं सबको मनोरा लेकर चले जाएं और इनाम उल हक को बोलते हैं कि आप सबको की दावत कर दें। क्यों खुद क्यों नहीं कर रहे हो पहले ये बताओ, उस बेचारे का क्या कसूर है जो इतने सारे लोगों की दावत खामखा कर दे। और इस बारे में क्या ख्याल है सोया आपका? आप दावत करेंगे तो मेरा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, मैं राजी हूँ सलीम अहमद। इनाम उल हक को नहीं, क्यों भाई? और इनाम उल हक खुद भी आ गए हैं और कह रहे हैं सलाम के बाद, अख्तर भाई कैसे हैं आप? आंटी चाची संजीदा और तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा है। लाला कह रहे हैं जिगर वाह वाह बहुत खूब अच्छा लगा सॉन्ग, थैंक यू। और थैंक्स कहा है सबा गुल ने भी। अयूब लाला कहते अयूब लाला वो पूछना ये था आपसे, ये जो इश्क के आग होती है इश्क की, क्या इससे चाय बन जाती है? ये लाला ही बताएंगे अब आपको। लाला जरा बताइएगा इश्क की आग से बन जाती है। और संजू कहती है लाला का, लाला आपका साथ हो तो मैं क्या मुश्क। नौरीन मैना सबा महनूर और सब सलामत रहें। लाला बादाम खा लें, बेचारी गुलबानों को खुश करने का मौका जाने नहीं देते। बादाम नहीं, अभी तो उसकी बात हो रही थी, आम की बात हो रही थी, आम की। वकील साहब कहते हैं आज हम थोड़ा लेट हो गए उसके लिए सॉरी। अरे नहीं नो प्रॉब्लम यार। नाइस सरायगी सॉन्ग नदीम भाई आपके शो की तरह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे वकील साहब हो गए। और सबीन कहती हैं आज का आपका मुताला पाकिस्तान, आज मुताला पाकिस्तान पढ़ रहे हैं आप क्या? आपने तंज जरूर करना है। और नदीम भाई पंजाब आए हैं और बहन से मिले बगैर केपी के चले गए। वेरी वेरी बैड, जीती रहो मेरी बहना, सदा सलामत रहो। यकीन माने आपके मैसेज ऐसे प्यारे होते हैं कि दिल से आपके लिए दुआ निकलती है। और बाबूजी ने, नदीम भाई ये सॉन्ग बाबूजी ने गाया है, बिल्कुल ओरिजिनली मेरे बाबूजी ने ही गाया, यानी कि जावेद अख्तर साहब का ये ओरिजिनली सॉन्ग है और उसके बाद उन्होंने इसको उर्दू में तर्जुमा किया था। तुझको कसम है मेरी ना आना हाथ खाली, आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली, यानी कि समझ रही है ना आप। अच्छा नौमान कहते हैं अच्छा जी वाह वाह ताजा ताजा गुलूना द्रे सलोर माला रोड़ा। और मिर्जा जय कह रहे वाह वाह द ग्रेट लेजेंड है मोहतरम जावेद अख्तर साहब, क्या कहने हैं। कोई टाइम था पीटीवी पर सुनना करते थे ये सॉन्ग जावेद साहब के, माशाल्लाह से। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, ये हमारे मिर्जा साहब थे। शनाया कह रही हैं कहने के नाम से पता नहीं क्या लिखा हुआ, यम यम यम खाने से। मैं भी इसको सगुन के साथ पढ़ूंगा, थोड़ा सा टेंशन में हूं, मैंने वक्त बड़ा महदूद सा रह गया है। मुझे भी कौमी गीत सुना दीजिएगा। बिल्कुल सुनाएंगे जनाब आपको भी कौमी गीत। ये हमारी फरीदा बुरानुद्दीन बहना है। अच्छा जनाब अब मैंने आपको चारों सूबे तो घुमा दिए, ठीक है जी। इसके बाद आप क्या समझते हैं पाकिस्तान खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ, हमारा गिलगित बल्तिस्तान जो है वो भी हमारे पाकिस्तान का ही हिस्सा है, जो कि रकबे के हिसाब से वो भी शामिल है।

हिसाब से वो भी शामिल है, आपको ये भी बताऊं। पांचवा जगह जो है गिलगित बल्तिस्तान जो है उसका रकबा भी मैं आपको बता देता हूं, वो तकरीबन 72,971 मुरब्बा किलोमीटर है और ये पाकिस्तान के शुमाली हिस्से में वाक़े है और खूबसूरती का एक पहाड़ी खित्ता है जनाब। ये इतना खूबसूरत के बस दंग रह जाएं, आप दुनिया की खूबसूरती को भूल जाएं। और एक बार फिर जहन नशीन कर लीजिए, पाकिस्तान का हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान, रकबा जो है इसका 72,971 मुरब्बा किलोमीटर है। और गिलगित बल्तिस्तान की जो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर और सोशल मीडिया की वजह से ये अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस लोगों को आई है और उनको पता चल गया था ये स्कर्दू कहां पर है, ये भी गिलगित में बल्तिस्तान में है। और हुंजा के बारे में भी आपने सुना होगा। देवसाई जो है ये मैदान है, बुलंद तरीन खूबसूरत मैदानों में ये शुमार होता है। और बुलंद तरीन से मुराद ये है कि हाइट पर है, बहुत बड़ा मतलब मैदान है देवसाय। और देवसाय जो है मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है ये भी। और हुंजा वादी जो है वो भी भरी पड़ी है खूबसूरत पहाड़ों से, झीलों से, कुदरती मनाजिर से। और उसके साथ साथ स्कर्दू के बारे में भी आपने सुना होगा। अच्छा, अताबाद झील के बारे में आपने सुना, कुदरती झील, नीले पानी वाली झील, यानी कि आप जाएं तो आप हैरानों परेशान रह जाएं। खंजराब बायपास के बारे में, खंजराब पास के बारे में आपने सुना होगा, ये भी बहुत ही बुलंद जगह पर ये वाक़े है और बहुत मशहूर मकाम है। और उसके अलावा शंगरीला जो है ये राकापोशी वहां पर मौजूद, तो बेतहाशा जिसको कहते हैं ना कि खूबसूरती, खूबसूरत जगहें वहां पर मौजूद है। अच्छा, वहां की भी मशहूर डिशें हैं और रिवायती और डिशेज हैं, उनमें जो सबसे पॉपुलर जो है ना, ये बहुत कम लोगों ने जो है इसको जो है खाया होगा, चाप शवोरो, जैसे हम कहते हैं ना शवरमा टाइप का, चवाप शवोरो, ये नाम के हवाले से मैं बोल रहा हूं। ये गोश्त से भरे हुए रिवायती जो है ना शवरनामा टाइप के या पेस्ट्री टाइप के ये होता है और बड़ा जबरदस्त इसका मजा होता है। इसके अलावा मोमो जो है ये गोश्त के भी बने होते हैं, सब्जी के भी बने होते हैं, ये भी वहां की बहुत मशहूर डिश है हमारे गिलगित बल्तिस्तान की। और एक है डवाडो भी एक डिश है, ये रिवायती सूप जो नहीं होती, सूप और नूडल्स वगैरह टाइप, ये इस टाइप की ये होती है। अब आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी बताऊंगा, पहले मैं इनकी बता दूं कि किस तरह की ये डिशेज होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये वहां की एक मकामी रोटी होती है जिसको फोलो कहते हैं, और नमकीन चाय वहां की बड़ी मशहूर है, और खुश खुबानी जो है वो बड़ी वहां पर सौगात है वो। और वो सौगात इस वजह से है कि वो इतनी बुलंदी पर वाके है कि उसको खाए बगैर जो है ना आप बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिस्म बर्दाश्त नहीं, उसको खाना बड़ा जरूरी होता है। अच्छा, ये डिशेस जितनी भी मैंने शवरमा टाइप की, नूडल्स टाइप की, इससे मिलती जुलती इस वजह से होती है कि क्योंकि चाइना का बॉर्डर साथ ही लगता है, तो वहां पर का इन्फ्लुएंस जो है वो वहां पर बहुत जरूरी है। वक्त बड़ा महदूद सा रह गया है, आपको फौरन से पेशतर गिलगित बल्तिस्तान लेकर चल रहा हूं मैं।

वेलकम बैक कहूंगा जनाब, और पूरा पाकिस्तान घुमाया आपको, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इनाम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज का। और हमारे प्यारे से इश्क की आग से चाय तो नहीं पकती, दाल क्या दाल पक जाती है, अल्लाह करे ये खुशी आपको भी नसीब हो। ये आपको जवाब आ गया जनाब अयूब लाला का। और इसके साथ ही जनाब अब चाहूंगा मैं आप लोगों से इजाजत, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे कल म्यूजिक ट्विस्टर में ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आखिर में जो मैं ट्रैक चला रहा हूं भाई, मुश्क की जानिब से संजू को डेडिकेट करेंगे, जरीन नूर की जानिब से संजू को डेडिकेट करेंगे, और हम हमारी जानिब से भी संजू के लिए ये ट्रैक है, कौमी गीत है। उम्मीद करता हूं आप सबको बहुत पसंद आएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।

네. अपने तमाम सुनने और देखने वालों को एफएम पाकिस्तान के कराची स्टेशन से आज बखान शोब की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला, और यकीनन मुंतजर होंगे हमारी आज की ट्रांसमिशन की, आज के प्रोग्राम के। प्रोग्राम आज के दिन, आपको पता है कि आज के दिन प्रोग्राम होता है इंटरटेनमेंट शो, जिसमें मिक्स म्यूजिक होता है, नया पुराना, फिल्मी गैर फिल्मी सब कुछ, एक जस्ट लाइक एक मिक्स चार्ट बना के आज के दिन लेकर आते हैं। और कोशिश करते हैं कि म्यूजिक थोड़ा सा टेम्पो फास्ट होना चाहिए, स्लो टेम्पो थोड़ा सा करते हैं, मगर हम प्रोग्राम के अख्तितम की तरफ, मगर शुरू में अपने प्रोग्राम का टेम्पो थोड़ा सा तेज लेकर चलती। और आप सबको खुश आमदीद कहूंगा मैं, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो शुरू करते हैं एक खूबसूरत ट्रैक से, एक खूबसूरत आवाज से आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम।

ओ लड़की सुन, प्यारी लड़की सुन मेरी जान। चलिए तो पैगाम था, कम से कम पैगाम भी तो पैगाम रसानी में साथ साथ होनी चाहिए साथ साथ। और जनाब शुजात मिर्जा क्या कहते हैं जनाब? सर थोड़ी मसरूफियात थी, हाजिर नहीं हो सका और लो में आ गया। और चूड़ी तो साडा चूड़ी का मंद साथ ये गल तो सही की। बारह चलो देर आए दूर से कोई काम काज भी पहले पहले हैं लाजमी। ये शोज तो सारी ये तमाम चीजें रेडियो टीवी तमाम या रबते ये सारे तो फुर्सत के काम है, सारे फुर्सत के काम। जो बंदा वेला हो ना उदे का ये सारे काम करने चाहिए ने। जो कम जरूरी हो फिर ये जरूरी नहीं होंगे। ऐसे लिए तुम चंगा किया सारे काम निपटा रहे हैं तो हम तुम आयो तो थानू असी वेलकम करने ठीक है। तो टाइम हो एक बज के 3 मिनट हो ते इंज करने ते एक शामिल करने खूबसूरत नगमा। उम्मीद है कि तुहानू भी हमीद गुल साहब आपको भी होर सारे ने भी चंगा लगेगा क्योंकि गल ही बड़ी चंगी है, आवाज बड़ी चंगी है। तो फिर वो सारे का फेवरेट खूबसूरत गुलकार भी है। गाना कि

0: Listen and watch. Live entertainment show. With Ajmal Khan Chowdhury. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: जी जनाब साथी मेरे जीना नहीं है तेरे बिना अकबर अली की आवाज में और हमें ज्वाइन कर लिया जनाब हुमा ने और हुमा क्या कहती हैं जनाब कहती हैं कि मैं किथे गया जी सलाम शुभ जी वालेकुम सलाम मैं सो गई थी कोई बात नहीं नींद बड़ी जरूरी भाई अगर सो गए थे तो उठना नहीं चाहिए नींद पूरी करनी चाहिए जरूरी होता है और उसके बाद जी की छाओ में माय फेवरेट ये असल में गाने के बोल में हुमा बताऊं आपको गाने के बोल है असल में अपना ग्रह हुए तूतां दी छाओ हुए तूतां दी छाओ मतलब तूत का मतलब है शहतूत कि अपना ग्रह हुए अपना गांव हो अपना जो गांव होते हैं देहात होते हैं वहां की बात है ये अपना ग्रह हुए तूतां दी छाओ हुए वान दी मंजी बान की कहता पहले चारपाई होती थी बान की बुनी होती थी और वो बांध से बुनी जाती थी चारपाई वान दी मंजी होवे तो सिर तले बांवे तकिए की जरूरत ही नहीं होती और इंसान जब बस सर के नीचे कहते ठंडे दरख्त की ठंडी हवाएं चल रही हो दरख्त का साया हो लहन हाथे खेत हो चारों तरफ और बंदा जो है वो चारपाई में लेटा हुआ हो और सर के नीचे बस तकिए की जरूरत ही नहीं होती मतलब फील ही नहीं होता कि तकिया चाहिए ये नहीं चाहिए सर के नीचे उसने हाथ रखा और हाथ कहते ये बस कहते अपनी वो कोनी जो है वो उसके नीचे रखता है और उसके बाद बस ठंडी हवाओं में खो जाता बंदा महसूस ही नहीं होता जी तकिया यहाँ चाहिए ये नहीं चाहिए तो यही बात है असल में उस दौर की और इस म्यूजिक की यही बात है कि बंदा खो जाता मैं तो यकीन खो जाता हूँ भाई चले बहरहाल उसके बाद जी और फिर के साथ ही मेरे जबरदस्त जी जबरदस्त थी और शोभा जी इसके बाद क्या भी कहती है जनाब शोभा जी छा गए तुसी छा गए जी क्या बात है थैंक यू भाई आप भी जबरदस्त और कहती आज मैंने जो है बाजा बजाया पों पों वाला क्या बात है बहुत ही मजा आया मगर मजा तो आया मगर इसको इस पोंपों को सुन के कितने लोग जो है वो अपनी खबगी का अपने गुस्से का इजहार करते हैं और हकीकत ये बहुत पता है पोंपों जो ये बाजा है ये कितने लोगों के मोहल्ले में अगर बज रहा हो तो उस मोहल्ले में यकीनन कोई ना कोई बीमार भी होगा कोई ज़ईफ भी होंगे कोई ऐसे लोग भी होंगे कि जिन्हें ये आवाज़ बड़ी बहुत खल रही होगी बहुत उनकी उनको तकलीफ दे रही होगी मगर पोंपू हम तो अपने मजे को देखते हैं हम कहाँ देखते हैं किसी की तकलीफ को किसी के सुकून को कहाँ देखते हैं तो कहते हैं सानू मजा आया बस बाकी खैर है यार जान दो ये पोंपू जो है ये पोंपू खासतौर पर इसीलिए बहुत बुरा है क्योंकि इसकी आवाज कानों में जाकर डायरेक्ट कानों में ऐसी लगती है ये खैर बहरहाल आपने इंजॉय किया चंगी गाले खूब इंजॉय करें और अब यूं करते हैं कि चूंकि यकीनन आज जो है वो 11 अगस्त हो चुकी है और हम अपने आज़ादी के दिन की तरफ करीब करीब हैं और फिर आपको पता है कि ये महीना वैसे हमारी आज़ादी का है और आज़ादी की खुशी हमें ज़रूरी नहीं कि हम अगस्त में मनाएं 14 अगस्त को मनाएं 23 मार्च को मनाएं ज़रूरी नहीं है हमारा तो हर दिन आज़ादी का दिन है हमें मनाना चाहिए मगर

ये आवाज थी रंगीला साहब की। रंगीला साहब आपको पता है वो भी हरफन मौला थे, सिर्फ अदाकार नहीं थे, वो गुलकार भी थे, हिदायतकार भी थे, फिल्म साज भी थे, नगमा निगार भी थे, क्या कुछ नहीं थे। क्या खूबसूरत लोग थे। और वक्त जनाब 2:41 मिनट हो चुके हैं।

साहब की आवाज है और दो गाना है, उसके बाद फिर मेरा नाम है मोहब्बत, गुलामुद्दीन बाबर शरीफ, अपने वक्त की कामयाब तरीन फिल्मों में से एक फिल्म। मेडिसन और नाइद अख्तर। और अब इसके साथ ही चाहूंगा मैं आपसे इजाजत आज के इस प्रोग्राम को खत्म करने की। जिंदगी रही, अल्लाह ताला ने मोहलत जिंदगी दी, कुछ और वक्त मिला आपसे मुलाकात के लिए, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आपने यूट्यूब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दरमियान के दिनों में 14 अगस्त में ये वैसे मैं शायद यहाँ मेरा शो ना हो, मगर मैं इस पर जरूर लाइव आऊंगा और आपसे जरूर यकीनन गपशप रहेगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोई बात नागवार गुजरी हो तो उसके लिए माफी के तलबगार हूँ, माफ कर दीजिएगा। पता नहीं जिंदगी का मुलाकात होती है नहीं होती। अल्लाह ने के बान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।

FM 100. FM 100. 100. 100. 100.

दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी। सोचो कभी मैं ये किसे कहूँ, आता नहीं मेरे दिल को सुकून। दुनिया झूठी, दुनिया वाले है फेक, उनके बारे में मेरा है टेक। I don't care what you think, what

싹싹해요 얼추 포기요 매덕 싹해요 얼추 포기요 매덕 싹해요 얼추 포기요 매덕 싹해요

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम या खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100।
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।